0: पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर ये मौका आए न आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख कर के तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा न समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहाँ राधा बैठी है श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूँ तुमसे, मैं जा रहा हूँ इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूँ मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। अगर आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा, कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम
1: बिल्कुल नहीं।
0: एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता, प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहाँ कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे। उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा, राधा जैसा हृदय राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार कृपा की भंडार नाम ही जिनका करुणामय है, ऐसी श्री राधा श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव मंजरी भाव क्या होता है उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

का यह अक्षर बस जाता है, क्योंकि इंसान ही नहीं खुद कृष्ण भी एक पत्ते पर राधा लिख करके उस पत्र को अपने हृदय से लगा करके घूमते रहते हैं। इतना प्रेम है राधा नाम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना कुछ अच्छा ना लगे, स्वप्न में भी सोते सोते भी मुख से श्री राधा श्री राधा श्री राधा निकलता रहे, वो दिन जीवन का सबसे धन्य दिन होगा, वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है, यद्यपि वो मीरा और राधा भक्त नहीं है, वो साक्षात कृष्ण की इष्ट है, मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई, लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस

बस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी। कैसे समा सकती, लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसकी। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है, इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है। और ब्रज की गोपियाँ, उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रही। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं।

0: हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला जो, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें, सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं, जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल, आप लेजी कर देती हूँ कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज़ वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
1: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें। और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके। तो वो बॉडी को बेनिफिट दें और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89

0: सोच, तेरा बच्चा कल तुझसे पूछे,
1: पापा पानी कहाँ से आता है?
0: तू क्या बताएगा?
1: कि कभी नल खोल कर छोड़ देते थे,
0: या ये कि हमने वक्त रहते समझ लिया था
1: पानी बचाना मतलब
0: अपने आने वाले कल को बचाना।
1: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।

0: फरीदाबाद तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरज कुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूँ कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला जो, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जाम्पल, आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें, कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज़ वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीज़ों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीज़ें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके। I'm not

everyone. Myself, Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इंफॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के, भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा करके उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरुजी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और

0: कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाएं कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
1: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं। और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से ये चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

0: वक्त हो गया है यहाँ पर आपको एक और प्रो टिप देने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपने पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी या पीसफुल चीजों के साथ शुरू करना हो, तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी क्या चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली चार्ज रहे और वो काफी मोटिवेटेड रहे।
1: मेरे किसी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे, जैसे चार्जिंग तो हम करते ही हैं। उन्होंने एक बात रखी थी, मैं आज यहाँ सामने आपके रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं उठता हूँ और सबसे पहले जब धरती पर पैर रखता हूँ, तो मैं हाथ झुकाकर धरती को सर पे मीज जैसे नमस्कार करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि आज मैं पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ और पूरे दिन आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ें थैंकिंग जो एटीट्यूड अपना बना लें कि हर चीज़ का थैंक्स करना शुरू करें। हमने ये तो सीखा बचपन में कि अगर कॉपी को पैर लग जाता है तो हम टच करते हैं, बैग को लग गया तो टच करते हैं। बहुत गुड हैबिट है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, ये कोई बेकार मैं नहीं, कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, बट आई फील कि आप कहीं तो उसके प्रति झुकने की एक भावना तो आई, भले अंदर से शायद हम एम्प्टी होकर के झुक रहे क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन इस आदत की वजह से ही सामने वाले के अंदर एक भाव जाग गया कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम कुछ ऐसा थैंकिंग बिहेवियर करें। मैंने एक व्यक्ति से और भी सुना था कि वो अपने लैपटॉप को थैंक्स करते हैं, तो क्या आपने कभी अपने लैपटॉप को थैंक यू किया है?
2: नहीं,
1: कभी हमने अपने सिस्टम जो हम गैजेट्स यूज करते हैं, कभी मोबाइल को थैंक यू किया है? हमने कभी नहीं किया है। तो अगर हम अपने नेचर में एक थैंकिंग बिहेवियर ले आए कि सुबह उस परमात्मा का थैंक्स करें कि आज क्या आपने दिन देखने का मुझे मौका दिया, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आज आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए बिकॉज मुझे आज बहुत आपका यूज करना है, अपने लिवर का, अपने स्टमक का आप थैंक्स करें। कई ऐसा कहेंगे हंसने वाली बात है, लेकिन अगर आप सच में जानेंगे, अगर आप इसे डेली रूटीन में ले आएंगे, आपका स्टमक फंक्शनिंग, आपका लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ये पहले से भले 1% ही सही, लेकिन वो सुधरने लगेगा क्योंकि ये साइंटिफिकली सेल्स वाइज थॉट वाइज आपका अंदर तक जा रहा है। और सबसे पहला डॉक्टर जो मैं कहती हूँ कि आप खुद हैं अपनी बॉडी के, दूसरा डॉक्टर बाद में मिलने वाला है, वो देर में मिलने वाला है, वो इनडायरेक्टली काम करेगा, मैं सबसे पहले काम करूंगा।
0: कई बार मैं आपको सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर में ऐसे बैठूं और उन चीजों को फॉलो करूं तो शायद एक नया नजरिया जो लाइफ को देखने का होता है ना, वो हम सबके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया, इतनी मोटिवेशनल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

जस्ट इमेजिन आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक बाइक खरीदी है और आप उसको लेकर जा रहे हैं अपने घर पे। घर पे आपने घर के अंदर खड़ी करने से पहले सोचा कि चलो मैं बाहर खड़ी कर देता हूँ, थोड़ा सा जो कचरा वगैरह लगा हुआ है वो सब साफ करने के बाद घर के अंदर खड़ी करूंगा। बट जैसे ही बाहर आए, रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, जैसे ही बाहर आए आरजे गौरव नहीं आया, आरजे गौरव तो रेडियो महारानी पर आया है। बट अब जैसे ही बाहर आया आपने देखा बाइक तो वहां पर खड़ी ही नहीं है। बाइक्स एंड कार की चोरी थोड़ी सी बढ़ गई है। बाइक चोरी की चार चोरी की गाड़ियां पकड़ी गई है, मतलब एक्चुअली में क्या होता है, चोरों ने चोरी करी फिर उसके बाद पुलिस तो मुस्तैद थी ही, उन्होंने अभी चार बाइक्स तो बरामद कर ली है। और ये बात मैं आज इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि फरीदाबाद में केसेस बढ़ रहे हैं बाइक चोरी के, और भगवान न करे किसी के साथ भी ऐसा हो। फेस्टिव सीजन वैसे ही नियर है, बहुत पास है, और किसी के साथ ऐसा होगा तो सोचो कितना दिल पे दर्द होगा। वैसे इंश्योरेंस करा के रखते हैं हर कोई, बट स्टिल एक मेहनत की कमाई से बाइक खरीदी हुई है और उसको कोई चुरा के ले जा, कितना दुख होता है कि नहीं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बाइक को टाइम टाइम पर सर्विस करवाइए और हो सके तो उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा दीजिए, और ऐसी जगह पे लगाइएगा जहां से निकाल ही ना सके कोई भी उसे। और जीपीएस ट्रैकर ना बहुत ईजीली लग जाता है, वो आपको मैकेनिक पे भी जाके लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, आपको जीपीएस ट्रैकर ऑनलाइन मंगाना है और उसको अपनी गाड़ी या फिर बाइक पर लगा देना है। कैसे कैसे लगाना है उसको, उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो देखो बाइक अगर चोरी हो जाएगी ना तो फिर उसके बाद आप उस बाइक को ढूंढ सकते हो कि वो बाइक जा कहाँ रही है, फिर पुलिस की मदद से उस चोर को भी पकड़ सकते हो और अपनी बाइक को भी वापस बरामद कर सकते हो। ये तो हो गई बात फरीदाबाद के बारे में। अब इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप बाइक या गाड़ी कहीं पर भी खड़ी करते हैं मार्केट प्लेस में, तो मेक श्योर कि ऐसी जगह पर खड़ी करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, और दूसरी चीज़ किसी इंसान की नज़र के सामने खड़ी करके जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए। और हाँ, एक और चीज़, जो मॉल के बाहर रोड पर गाड़ी खड़ी कर देते हो ना, ये वाली हरकतें बंद कर दो प्लीज़ यार। आप लोग फरीदाबाद के स्मार्ट वासी हैं तो स्मार्ट

को कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं उन सभी से, कि क्या आप लोगों ने कभी भी अपने सपने में किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग को देखा है? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड वक्त हो चुका है सपनों को डिकोड करने का। एंड मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग मीन्स किसी एलियन को देखा है आप लोगों ने? कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग ही एलियन है, या फिर हमारे बीच में काफी सारे दूसरे प्लैनेट से आके लोग रह रहे हैं। खैर, वापस आते हैं सपने पे। अब सपने में कभी देखा आप लोगों ने एलियन को? एक्चुअली अगर आपने एक्चुअली देखा ही ना, तो इसका मतलब यही है कि आप किसी चीज या फिर किसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। हो सकता है ऐसा बहुत कुछ मतलब है इसके, और एक मतलब तो ये भी है कि हो सकता है कि आप अकेलापन फील कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि आपकी मतलब किसी जगह पर या किसी ग्रुप में या फिर किसी नई सिचुएशन में आप फिट नहीं हो पा रहे हो। होता है, बहुत बार होता है, नई जगह जॉब ज्वाइन करी है और आप लोग फिट नहीं हो पा रहे, तो ऐसे सपने में भी एलियन देखने लग जाएंगे आपको। अच्छा, एक और चीज़, काफ़ी बार ना हमें कुछ ऐसी चीज़ों से डर लगता है जो कि लाइफ में है भी नहीं, क्योंकि लाइफ में कोई नया बदलाव आ गया, मान लो नई जॉब लग गई, नया स्कूल या फिर कोई नया रिश्ता है, तो भी ऐसी चीज़ें होती है, मतलब साफ दिखाता है कि आप नर्वस हो। और इसके अलावा आपकी लाइफ में आप अगर चेंजेस चाहते हैं ना, तो भी आपको अपने सपने में एलियंस दिखाई दे सकते हैं। अब इसके और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमें सपने में दिखाई दे रहा है उसका मतलब ही हो, 100% ज़रूरी नहीं है। और 100% ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब जो भी चीज़ हमें दिखाई दी वो सच में भी हो जाए। तो मेरे सपने में एक चीज़ तो हमेशा होती है कि हम लोग फरीदाबाद में रह रहे हैं और पता नहीं आसमान से एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप आ रहा है, और वो हर बार आता है, और पता कैसा दिखता है वो, मतलब ये समझ लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उड़ते हुए आ रही है। मेरे सपने में ऐसा आता है कि एलियन आ रहे हैं पूरे पृथ्वी पे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? शेयर ज़रूर कीजिएगा कि एक ही सपना रिपीट हुआ हो तो हम लोग उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नंबर है मेरा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल आप सभी के लिए ये गाना।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

0: क्या आप लोगों ने भी ये बात सुनी है जिसमें लोग आपको जिम में कहते हैं कि हैवी वेट उठाओ, हैवी वेट उठाओ, हैवी वेट उठाओ।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड एक बात जो मैं भी बोल रहा हूं वो यही है कि जिम में ना हमारे काफी सारे ऐसे दोस्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कोई ना कोई एडवाइस आके देंगे, वो भी फ्री फंड की। एंड जिम ब्रो इज विद यू, डोंट वरी। अब मैं आप सभी को बताता हूँ रियलिटी क्या होती है। देखो जिम में हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मसल ब्रेकडाउन होती है, मसल ब्रेकडाउन, टिश्यूज ब्रेकडाउन होते हैं, फिर उनको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हम लोग घर जाके अपनी डाइट कंप्लीट करते हैं और इस तरह से आपकी मसल्स ग्रो करना शुरू कर देती है। पर यहाँ पर आते हैं वो लोग जिन्हें कहा जाता है ईगो लिफ्टर, और ये लोग ईगो में ऐसा ऐसा वेट उठाने की कोशिश कर देते हैं, फिर उसके बाद 5 से 10 दिन तक अपने बेड पे पड़े रहते हैं क्योंकि इनको कोई ना कोई इंजरी भी हो जाती है। तो किसी और के कहने पे कभी भी हैवी वेट मत उठाइएगा, एक सर्टिफाइड ट्रेनर की गाइडेंस के अंडर ट्रेनिंग लीजिए, और अगर वो भी आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग YouTube को अपना कोच बना लीजिए, आप YouTube पर वीडियोस देखिए, फॉर्म सेलेक्ट कीजिए, पूरा एक फॉर्म होता है वेट उठाने का, तो उसी फॉर्म में आप लोग वेट उठाइए और धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट बढ़ाइए, ग्रेजुअल ओवरलोड कहते हैं उसे, और उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, आप लोग भी एक दिन परफेक्टली हैवी वेट लिफ्ट कर पाओगे। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए क्योंकि ऐसी और भी ढेरों टिप्स लेकर आता रहूँगा रेडियो महारानी 89.6 पर। अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना
1: Drink.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

नहीं क्यों, बट ये गाना सुन के ना एक अलग सी एक्साइटमेंट सी हो जाती है, जैसे कि आज रात की हो रखी है 9 बजने में सिर्फ और सिर्फ 10:30 बचे हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है मेरे को सिर्फ घर जाना है, बट स्टिल मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। आरजे गौरव है आप सभी के साथ। बहुत सारी बातें कर ली आज हमने, वो टाइम आ चुका है जब हम लोगों को रात को एसी में भी ठंडा लग रहा है, चादर ओढ़ रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं कुछ लोग, और एक पैर बाहर निकाल रहे हैं तभी नींद आ रही है, और बाइक्स चोरी हो रही है, फरीदाबाद में गाड़ियां चोरी हो रही थी, पुलिस ने भी नकेल कसी और पुलिस ने पकड़ डाला बहुत सारे लोगों को, इन सब के बारे में हमने बात करी। और इसी के साथ साथ एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि मैराथन होने जा रही है 27 सितंबर को, आप लोग भी रजिस्टर कीजिए, फरीदाबाद मैराथन हाफ मैराथन .in फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है और प्राइज अप टू 10 लाख रुपीज। 3 कैटेगरीज हैं, 16 से 45, 45 से 60 एंड 60 एंड अबव। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग भी इसमें रजिस्टर कीजिए। ड्रग फ्री हरियाणा के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, सूरजकुंड मेला ग्राउंड से ये रन शुरू होगी, 5 किलोमीटर फन रन, 10 किलोमीटर टाइम रन एंड 21.1 किलोमीटर टाइम रन, और 10 किलोमीटर और साथ ही साथ 21 किलोमीटर वाली टाइम रन में आपका पूरा का पूरा हिसाब लिखा जाएगा, यानी कि कैसे आप लोग भागे हैं, कितना भागे हैं, कितना रुके, टाइम वाइम सब कुछ देखा जाएगा और उसमें ही प्राइजेस मिलेंगे, फन रन में कोई प्राइजेस नहीं है। तो ये था आज का निचोड़ और इसी के साथ साथ अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। कहाँ जाने की, आपके भी तो कोई ना कोई प्लान्स होंगे, हो सकता है आप लोग इस टाइम निकल चुके हो ऑलरेडी गाड़ी लेकर, पै पै पै पै पै गाड़ी पे पी पी पी तो नहीं बजती, अब तो पै बजता है गाड़ी में, तो वो कौन सा है, गाड़ी बिल्कुल हैवी होनी चाहिए, फीचर देख के कार नहीं लेंगे, इंजन तगड़े चक्की दे, तो यही सब चीज़ें करके हम भी निकलेंगे अपनी गाड़ी वाले गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में 2-व्हीलर है मेरे पास, उसमें बैठ के निकल जाऊंगा मैं यहाँ से और लेता हूँ इजाज़त। मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार की शाम 5 से 9, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। और अभी आप सभी के लिए ये गाना, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्ट्रेस स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। या किडनी केयर मंत्रा की मैं बात करूं तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रखें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल रखें, मोटापे से बच के रहें, वजन को कंट्रोल रखें और अननेसेसरी पेन किलर नहीं रहे, क्योंकि किडनी खराब होने का जो सबसे कॉमन रीजन है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इनजुडिशियस यूज ऑफ पेन किलर है। तो इन चीजों का ख्याल रख के हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके ले।

0: गौरव तुषार रेडियो केजीटी जहां
1: हर पल फुल ऑन धमाल। ये वो गाना आपने सुना है क्या, भाग भाग भाग भाग भाग भाग, आगे का नहीं बोलूंगा।
2: हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है, भाग मिल्खा।
1: अब तू भाग मिल्खा, तो वही करने का टाइम है 27 तारीख को,
2: 27 ऑफ सितंबर। तो मैं तो दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तेरे को बताइए, मैं रनिंग की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ आजकल। स्टेटस देखता है मेरा,
1: 10 किलोमीटर वाला,
2: 10 किलोमीटर वाला।
1: हाँ, क्योंकि 5 वाला है तो शायद मेरे को लग रहा है
2: फन रन है। नहीं, 5 किलोमीटर वाला फन रन है। जो इजी चीज होती है वो मैं करता नहीं हूँ, मुश्किल चीज भी नहीं करता।
1: गोल जलेबी बनाने से बढ़िया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दे कि हाफ मैराथन उसका नाम है जो हरियाणा
2: गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, फरीदाबाद halfmarathon.in पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। रेडियो महारानी इज
1: ऑफिशियल रेडियो पार्टनर फॉर दिस रन, और जिसमें 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों ही रन होने वाली है। इसके साथ साथ 21.1, आज मैंने पूरा बोला,
2: बिल्कुल 21.1 किलोमीटर की ये जो रन है, इसमें विनर को बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस मिलने वाले हैं। 3 कैटेगरीज है, 16 से 45, 45 से 60 और 60 प्लस।
1: तो आप किस में रजिस्टर कर रहे हो, वो आप जाके देखो।
2: 60 प्लस में,
1: 60 प्लस में
2: कम कंटेस्टेंट होंगे ना वहाँ पे।
1: अच्छा, वही कह रहा हूँ। तो आप वहाँ जाके वो कर सकते हैं। विनिंग प्राइस यहाँ पर आपको बता दिए। फन होगा, जुम्बा होगा, म्यूजिक होगा, एंटरटेनमेंट होगा, इतना सब कुछ होगा, तो क्यों नहीं कोई आएगा।
2: हम भी होंगे वहाँ पे।
1: हाँ, हम भी होंगे।
2: और इसी के साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जिस भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जाइए रजिस्टर कीजिए, रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट।
1: हाँ, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम एक हेल्दी हरियाणा की नींव रखना चाहते हैं और
2: नशा मुक्त
1: ये जो एक्सप्रेशन के साथ आपने किया है जो ये लोग देख भी नहीं पाए,
2: बिल्कुल
1: फिर से करके दिखाओ,
2: नशा मुक्त हरियाणा।
1: हाँ, उसके बाद ये जो करा है इन्होंने, तो इससे फ्री होना है बेसिकली हमको।
2: बिल्कुल, इनहेलर नहीं रखना है अपने साथ, और इसी के साथ रेडियो महारानी सुनते जाना है। मैं हूँ गौरव,
1: मैं हूँ तुषार,
2: और आप सुन रहे हैं।

0: गौरव महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो ऊंचा ना होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

0: वो काम मैं कर देता तो मुझे घर निकाला क्या देश निकाला हो जाता। अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से 1.13 करोड़ रुपए स्वाइप कर डाले।
1: गौरव तुषार
2: रेडियो के जीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
3: आपके घर में तो आपको तमाचों पे डिस्को कराया जाता।
0: मुझे तो
3: चट चट चट चट चट कहां गए, उतने ही थप्पड़ ना पड़ते आपको जितना अमाउंट आपने निकाला है।
0: 1.13 करोड़ रुपए
3: एक्चुअली आपको पड़े कैसा लगेगा?
0: नहीं, मुझे नहीं पड़ेंगे क्योंकि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी है और मुझे बचपन से सिखा दिया गया था ये जो कार्ड होता है ना इसमें करंट लगता है।
3: वाह वाह नहीं वाह, क्या घर वाले थे। लेकिन उसने जो क्रेडिट कार्ड से करा वो उसका नहीं था ना, उसके पापा का था, उसकी कंपनी का था। पापा
0: उसके पापा की कंपनी का था। बच्चे ने अपने पापा की कंपनी के क्रेडिट कार्ड से 1.13 करोड़ रुपए स्वाइप कर डाले, स्वाहा कर डाले। एक्चुअली में हुआ ये
3: तो कंपनी ने जब दिया कि भर सर ये भरिए थोड़ा सा, तो पता चला कि इतना खर्चा हो गया। पिताजी को यही नहीं पता था कि बेटा YouTube वीडियो पे पैसा लगा रहा है, जहां से पैसा आना था वहां पर वो पैसा लगा रहा है।
0: जहां से पैसा आना चाहिए था बच्चे ने ये सोच के अपना YouTube चैनल बनाया। 9 साल का लड़का था ये और पिता को भी
3: 9 साल में YouTube चला रहे।
0: बिल्कुल।
3: आप क्या कर रहे थे 9 साल में?
0: 9 साल में छड़िए, खैर मैं तो क्रिकेट खेलता था और बताऊं गर्मियों की छुट्टियों में मैं सुबह निकल जाता था और मैं शाम को बिल्कुल काला होकर आता था, घर में आके पिटता लगता रोज।
3: जब मैं छोटा बच्चा था मैं खूब क्रिकेट खेलता था, मम्मी मुझे बहुत मारती, पापा बहुत डांटते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही सब चीजें थी। बट अभी वापस बच्चे के ऊपर आते हैं तो ऐसे किस्से जब भी सुनने को मिलते हैं ना तो मतलब लगता है कि पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए थोड़ा बहुत। व्हाट डू यू थिंक तुषार?
3: नहीं, पेरेंटल कंट्रोल तब हो जाए, पेरेंट को पता हो, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बच्चे ने खर्च कर दी है।
0: उन्होंने क्या किया था, पेरेंट ने जो ये लड़का था 9 साल का, इसके पापा ने 1900 रुपए पे सेट कर रखा था कि 1900 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर पाएगा। बट उन्हें क्या पता था कि सारी वीडियोस पे 1900 रुपए का वो भी डेली का कर देगा।
3: तब वो जाके पर डे 1900 का था?
0: नहीं, वो पर मंथ का 1900 रुपए का था, बट वो 1900 रुपए से ज्यादा स्वाइप नहीं हो सकते थे। तो उसको पता लगा 1900 रुपए से ज्यादा स्वाइप तो होंगे नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारी वीडियोस पर 1900 रुपए पर डे के हिसाब से लगा देता हूँ। लाखों में व्यूज तो पहुंच गए बट जेब से करोड़ों रुपए भी चले गए।
3: अब लेकिन मोनेटाइज हो गया तो वो क्या उससे पैसे कमा पाएगा?
0: शायद हाँ और शायद ना, चलिए तो वक्त बताएगा। मगर अभी फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी के लिए ये गाना चलाने का। रेडियो महारानी पर सुनिए इस गाने को। मैं हूँ गौरव।
3: मैं हूँ तुषार और आप सुन रहे हैं रेडियो के
0: जी टी।

के अंदर फैशन आईकॉन स्वैग ऑन फ्लीक। बॉलीवुड वालों को स्वैग सिखा दू, ब्रांड जो पहनू उसकी सेल बढ़ा दू, मेरे बारे तुझे दुनिया बताएगी, खेलना तू चाहती है तो खेल खिला दू।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

भी है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना तो मन भी है, मिले जे कोई चाहता है।

0: अक्टूबर में होने जा रहा है कौन, मतलब आने जा रहा है विजय। विजय के बाद आएगी विजय दशहरा, विजय दशमी मीन्स, और फिर उसके बाद होगा दिवाली मेला। हाँ, अक्टूबर में ही दिवाली मेला लगने जा रहा है फरीदाबाद में। कहां पर लगेगा सब कुछ बताऊंगा, रुको जरा सबर करो।
1: गौरव तुषार रेडियो के जीती, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: अरे आप सस्पेंस बना रहे हो, मैं यहाँ पर सस्पेंस सबका ऐसे रिवील कर देता हूँ।
0: ब्रेक करने आया
2: हूँ। हाँ, ब्रेक करने आया हूँ। बेसिकली ये दिवाली मेला लगने वाला है सूरज कुंड मेला ग्राउंड में,
0: और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। मेरे को ना वो बचपन का दिवाली मेला याद आता है, तो कानपुर से है, नहीं पता, फरीदाबाद में एक रेड क्रॉस दिवाली मेला लगा करता था।
2: रेड क्रॉस, लेकिन क्यों?
0: रेड क्रॉस एक सोसाइटी थी ना।
2: अच्छा।
0: तो वो लोग लगाते थे दिवाली मेला।
2: मेरे को लगा कोई हॉस्पिटल लगा।
0: नहीं नहीं नहीं, तो रेड क्रॉस दिवाली मेला लगता था और उसमें बहुत सारे गेम्स होते थे, तो वो चीज आजकल मिस करता था मैं। और फिर अब लग रहा है सूरज कुंड दिवाली मेला, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
2: और ये 23 तारीख से 27 तारीख तक लगने वाला है अक्टूबर में, और बहुत सारी चीजें होने वाली है। फन गेम्स होने वाले है, स्टेज होने वाला है, फूड होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट
0: बहुत बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें मिलने वाली। देखो मेरे को लगता है मेले में गए और गेम्स ना खेले और कुछ खाया नहीं और जिद करके थप्पड़ ना खाया, तो फिर क्या फायदा। मतलब जिद में करता था कि ये दिला दो, दिलवाते थे नहीं कोई घर वाले।
2: तो अब आप जिद करो और अब थप्पड़ पड़ जाए। कैसा लगेगा?
0: अब मैं जिद ही नहीं करूंगा, मैं खुद खरीद लूंगा यार, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं लाला। खैर मैं आप सभी को बता दूं, जो ये फरवरी में आर्ट एंड क्राफ्ट मेला लगता है, जो हैंडीक्राफ्ट मेला लगता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 स्टॉल्स ही लगेंगे।
2: मतलब मिनी मेला,
0: मिनी मेला काइंड ऑफ है। मतलब जो आप लोग फरवरी में एक्सपेक्ट करते हो बहुत सारी भीड़ ये हो, इस बार आपको ये कम मिलेगा और रात भर चलेगा। रात भर मींस कम से कम 11 बजे तक चलेगा।
2: लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या इंटरनेशनल ब्रांड्स या इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं जो फेब में आ रहे हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान?
0: नहीं नहीं नहीं, इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला। दिवाली मेला मीन्स दिवाली मेला, ये प्योरली इंडियन फॉर इंडियन बाय इंडियन।
2: क्या बात है, ये लाइन सुन के मेरे को लग रहा है ये मेले में जाना तो बनता है।
0: और दिल्ली से हम लोग जितने भी समय सुन रहे हैं, अगर बाई चांस हमारी आवाज पहुंच रही है, तो दिल्ली से क्लोजेस्ट है देखो सूरज कुंड, मगर फरीदाबाद की जान है सूरज कुंड, तो हम लोग चलेंगे दिवाली मेला में, आप लोगों से मिल लेंगे वहीं पर ही। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी में गाने चलाते हैं आप लोगों के लिए।
2: दिवाली वाले?
0: नहीं दिवाली वाले तो नहीं, मगर मनाली वाले जरूर चलाएंगे।
2: वाह, क्या राइमिंग है।
0: दिल्ली से चलेंगे
2: मनाली।
0: सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। मैं हूँ गौरव।
2: मैं हूँ तुषार, और आप सुन रहे हैं रेडियो के
0: जीती।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: मुझे लगता है जब भी कोई नई चीज आती है ना मार्केट में, तो इन्फॉर्मेशन से ज्यादा भ्रम फैला दिया जाता है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता और फिर भी वो लोग अपना अपना दिमाग लगा के कुछ भी बोल जाते हैं।
1: गौरव तुषार रेडियो केजीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: मिथ को आज हम ब्रेक कर देंगे, ऐसे बीच से पकड़ के तोड़ देंगे जो लोगों के दिमाग में मिथ चल रहा है।
0: मुझे लगा जिस तरह से तुमने बताया, बीच में से पकड़ के फाड़ देंगे, चीर फाड़ देंगे, चीर दूंगा फाड़ दूंगा।
2: ब्रेक करना है।
0: तो सबसे पहला मिथ वो ये है कि अभी से ही लोगों ने दुकानों से अपने यूपीआई के वो हटा दिए। क्यों
2: नहीं हटाए भाई? मैं अभी भी जा रहा हूँ, यूपीआई पेमेंट कर रहा हूँ और बहुत इजीली कर पा रहा हूँ।
0: कर पा रहा है, बट अभी वीडियोस आई हैं, फोटोज आई हैं जिसमें लोगों ने हटा दिए। तो उन लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहली चीज ये होने जा रहा है 15 अक्टूबर के बाद। अब दूसरा मिथ जो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, रिसर्च में पता लगा था कि इंडिया में 95% जो यूपीआई की पेमेंट होती है वो 2000 रुपए से नीचे की होती है।
2: मैं तो 10-10 रुपए में भेजता
0: हूँ। वो 12 की हो गई वैसे।
2: नहीं नहीं, मैं 10 रुपए, जैसे किसी दोस्त का फोन आ जाए कि 2 रुपए है मेरे पास, 10 भेज दे।
0: अच्छा, ये भी अच्छा था। खैर मैं आप सभी को बता दूं, जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं, अपने घर की नियरेस्ट वाली दुकान देख लेते हैं जो गली के कोने पे नहीं होती, किराना स्टोर, तो उससे 2000 रुपए का सामान मैंने तो आज तक नहीं खरीदा, मुझे जहां तक याद है। और फिर मैंने जाके भैया से पूछा भी, भैया आपके पास मैंने कभी 2000 रुपए का सामान खरीदा? कहते नहीं। और एक इसके ऊपर जीएसटी वाला बड़ा इशू आ रहा है, तो बताइए इसके बारे में तुषार।
2: जीएसटी वाला इशू ये आ रहा है कि इस पे अब जीएसटी लगाई जाएगी और लोग कह रहे हैं 18% जीएसटी, बट पूरी चीज समझ लो कि 18% किस पे लगने वाली है।
0: 18% जीएसटी लगने वाली है एमडीआर पे, मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे। जैसे कि मान लेते हैं आपने 2000 रुपए दिए दुकानदार को और दुकानदार के ऊपर ये एमडीआर लागू हो रहा है। अब इस 2000 रुपए पे 0.40% चार्ज किया जाएगा एमडीआर, यानी कि 8 रुपए, और 8 रुपए पे 18% लगाई जाएगी, यानी कि 9 रुपए समथिंग हो जाएगा वो पूरा का पूरा अमाउंट।
2: 1 रुपए समथिंग लगेगा।
0: हाँ, 1 रुपए समथिंग जीएसटी लगेगा। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा चलेगा, बट नहीं, लोग तो अभी से शुरू हो चुके हैं, नहीं जी हमें तो लूट रहे हैं ये कर रहे हैं। नहीं, आप पढ़िए उसके बारे में। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जो बड़े दुकानदार हैं जो पहले से ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग इवन 2% चार्ज देते हैं बैंक्स को। देखो पता है, जब तू अपना कार्ड यूज करता है किसी दुकान पे जाके, तो उनको 2% चार्ज देना पड़ता है बैंक को।
2: वो तभी नहीं लेते हैं पेमेंट ना हमसे, हाँ। तभी वो कहते कैश लाओ,
0: कैश लाओ। तो अब मुझे लगता है लोग यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कैश के ऊपर जाएंगे, हो सकता है जाएंगे, मगर ये तो वक्त बताएगा कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला।
2: फिर हम कैशलेस इंडिया कैसे बनेंगे?
0: यही एक सबसे बड़ा सवाल है, मगर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इस पे भी कुछ ना कुछ संशोधन जरूर हो जाएगा और हम लोग यही प्रे करेंगे। और वैसे भी हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा हो गया यहाँ से जाने का टाइम।
2: हाँ, जाके चेक भी करना है कि यूपीआई पेमेंट लेंगे कि नहीं।
0: चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मिलूंगा आप सभी से मंडे की शाम 5 से 9, और तुषार मिलेगा आप सभी को।
2: मैं मिल जाऊंगा 11 से 2।
0: 11 से 2 नारी नंबर 1, तुषार हमारी नारी है।
2: नहीं, नारी नंबर 1 जो है वो शो का नाम है।
0: शो का नाम है, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप सुन रहे हैं। अभी जो शो चल रहा है उसका नाम है रेडियो के
2: जीटी।
0: एंड बाय बाय, दिस इज आरजे गौरव,
2: दिस इज आरजे तुषार
0: साइनिंग ऑफ।
3: Got an Ozla in the jungle.

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: कुछ कुछ कुछ हटके।
1: सिनेमा का कैप्सूल, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहाँ एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहाँ की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड। मैं गीत हूँ और आज मैं आपको बिजनेस अनप्लग्ड में कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसे दौर की कहानी जब इंडिया का रोजमर्रा का खाना बहुत सिंपल था लेकिन चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी। हमें जाना होगा इसके लिए लगभग 90 से 100 साल पीछे, उस इंडिया में जो ब्रिटिश रूल के नीचे था, उस टाइम पे जहां सुबह की चाय होती थी लेकिन साथ में जो चीज अंग्रेज खा रहे थे वो आम इंडियंस के लिए एक क्लोज्ड दुनिया थी। वो चीज एक बॉक्स में आती थी, बॉक्स का नाम होता था हंटले एंड पामर्स। ये बॉक्स बड़ी बड़ी स्टोर से निकलता, सीधा अंग्रेज ऑफिसर्स के घर जाता, उनके बंगलोज, उनके क्लब्स और उनके महलों तक, और सुबह की चाय के साथ वो खाया जाता और इंडियंस बस देखते रह जाते। उन्हें पता ही नहीं होता था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, टेस्ट कैसा है और ये चीज कुछ लोगों के लिए है। उस वक्त वो चीज खाना नहीं थी, वो स्टेटस सिंबल थी जो अंग्रेज खा रहे थे और हम नहीं। और यहीं पर ये कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इसी गैप को सबसे पहले नोटिस किया एक इंडियन।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वंस अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड. मैं आपके साथ गीत हूँ और जो इमोशन की मैं बात कर रही थी ना, ये है बिस्किट. चाय कंप्लीट करता है, जिस बिस्किट के बिना शाम थोड़ी अधूरी लगती है. एक टाइम था जब वो सिर्फ अंग्रेजों की प्लेट तक सीमित था. उस वक्त इंडिया में बिस्किट का मतलब था फॉरेन बॉक्स, फॉरेन टेस्ट और फॉरेन कंट्रोल. इंडियन बिस्किट्स को जानते भी नहीं थे. फिर इसी बीच एक इंडियन के माइंड ने पहली बार सोचा, हम भी क्यों नहीं. नाम था लाला राधा किशन. इन्होंने सबसे पहले एक देसी बिस्किट बनाने की कोशिश की. इस बिस्किट का नाम था द हिंदू बिस्किट. ये दिल्ली में लगभग 1898 के आसपास की बात है. आइडिया स्ट्रॉन्ग था, इंटेंट ऑनेस्ट था, पर टाइम टफ था. मार्केट रेडी नहीं थी, लोग बिस्किट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स आते गए. फॉरेन ब्रांड ज्यादा पावरफुल थे, डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में था और रिजल्ट द हिंदू बिस्किट ज्यादा दूर तक नहीं चल पाया. पर कहानी यही खत्म नहीं होती. कभी कभी एक फेलियर सिर्फ पॉज होता है, एंड नहीं. फिर आया एक बड़ा मोमेंट, स्वदेशी मूवमेंट. महात्मा गांधी ने जब 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी का नारा दिया तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बदली, माइंडसेट बदलने लगा. लोग सोचने लगे, जो हम रोज यूज करते हैं क्या वो हम खुद नहीं बना सकते. और ये सोच सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, ये सोच गुजरात तक पहुंची और गुजरात में एक टेलर तक. एक सिंपल सा आदमी रोज सिलाई करता था, कपड़ों से घर चलाता था, पर स्वदेशी के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अंग्रेज बिस्किट बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं. उस टेलर का नाम था मोहनलाल दयाल. इन्होंने सपना नहीं देखा, इन्होंने पॉसिबिलिटी देखी और वहीं से इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है. एक टेलर, एक बिस्किट और एक देसी ड्रीम. कैसे आगे बढ़ती है ये कहानी, कैसे एक छोटी सोच एक बड़ी हैबिट बन जाएगी, जानेंगे हम थोड़ी देर बाद. पहले सुनते हैं गाना, गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, अपने एम्बिशन सब मांगे, उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

बिल्कुल हम सफर में हैं और गाना है फ्रॉम द मूवी जब हैरी मेट सेजल, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। हम बात कर रहे हैं एक बिस्किट की, नाम है पार्ले जी। साल था 1900। गुजरात के वालसाड से एक 12 साल का लड़का मुंबई की तरफ निकल पड़ता है। ना कोई सूटकेस, ना कोई बैकअप प्लान, बस एक चीज थी, काम सीखना है, जिंदा रहना है। मुंबई में इस लड़के ने सिलाई सीखी। कपड़ों के बीच सुई धागे के साथ रोज का दिन निकालता रहा। सिलाई सीखने के बाद कुछ दिन दूसरों की दुकानों पर काम किया, ऑब्जर्व किया, सीखा और चुपचाप ग्रो करता गया। 6 साल बाद जब वो लड़का 18 साल का हुआ तो मुंबई के गांव देवी एरिया में उसने अपनी छोटी सी दुकान खोली और यहीं से इसकी जिंदगी ने स्पीड पकड़नी शुरू की। वो सिर्फ टेलर नहीं रहा, वो बिजनेस समझने लगा। कुछ ही सालों में इन्होंने 2 कंपनीज खड़ी कर दी थी और धीरे धीरे वो लड़का मुंबई के सिल्क मार्केट में एक पहचान बन गया। नाम था मोहनलाल दयाल। सिल्क का काम चल रहा था पर दुनिया बदल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, मार्केट से ले सप्लाई रुक गई और तब मोहनलाल दयाल ने एक बड़ा डिसीजन लिया, सिल्क बिजनेस बंद। वो अपने 5 बेटों के साथ एक नया रास्ता सोचने लगे और इसी बीच स्वदेशी मूवमेंट दिल और दिमाग दोनों में था। इन्होंने सोचा बिस्किट सिर्फ अंग्रेज खा रहे हैं, इम्पोर्टेड, महंगे, आम आदमी से दूर। मोहनलाल दयाल ने सोचा अगर खाना है तो सबके लिए होना चाहिए ना। 1928 में इन्होंने एक कन्फेक्शनरी कंपनी शुरू की, नाम रखा गया हाउस ऑफ पार्ले। सीखने के लिए जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ कन्फेक्शनरी बनाना सीखते हैं। 1929 में 60,000 रुपए की मशीन खरीद कर इंडिया लौट आए, फैक्ट्री शुरू की, पहली बनी ऑरेंज कैंडी। और फिर 1939 में मोमेंट आया जब बिस्कुट बनाना शुरू हो गया। उस वक्त मार्केट पर ब्रिटिश ब्रांड्स का राज था, ब्रिटानिया, हंटले एंड पामर्स, यूनाइटेड बिस्किट्स। पर पार्ले ने एक अलग बात सोची, सस्ता, देसी, हर किसी के लिए। इंडिया में बना, इंडियन लोगों के लिए बना और बस यहीं से एक बिस्किट आदत बन गया। जो अंग्रेजों की टेबल से निकला वो इंडियन चाय के साथ घर घर पहुंच गया।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ पार्ले जी के सफर की। पार्ले का सफर शुरू हुआ एक स्मॉल स्केल से, एक टेलर के विजन से जो सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए कुछ टेस्टी और अफोर्डेबल क्रिएट करना चाहता था। 1929 में शुरू हुई फैक्ट्री में पहली चीज बनी ऑरेंज कैंडी बच्चों के लिए, घर घर के लिए सिंपल स्वीट। पर 1939 में बिस्किट बनना स्टार्ट हो गया, मार्केट टफ थी, ब्रिटिश ब्रांड डोमिनेट कर रहे थे, ब्रिटानिया, हंटले एंड पामर्स, यूनाइटेड बिस्किट्स। पर पार्ले ने सोचा हर इंडियन के लिए एक देसी बिस्किट, और इसी सोच के साथ पार्ले जी का फाउंडेशन बना। एनर्जी रिच, पॉकेट फ्रेंडली और इजी टू ईट, लोगों ने इसे तुरंत अपनाया। 1950 से 1960 में पार्ले ने स्नैक्स और कैंडीज एक्सपेंड किए, मोनाको, किसमी, पॉपिंस, हर प्रोडक्ट सिंपल, टेस्टी और अफोर्डेबल। और 1980 ये वो वक्त था जहां पार्ले ग्लू को ऑफिशियली बना, यानी कि पार्ले जी, जी का मतलब था ग्लूकोज, एनर्जी का सिंबल। बचपन से लेकर एडल्ट तक हर कोई इस बिस्किट को पसंद करने लगा और मार्केटिंग भी काफी इनोवेटिव थी। शक्तिमान, छोटी बच्ची का एड, सिंपल और मेमोरेबल, हर घर में पार्ले जी, हर चाय के साथ एक हैबिट बन गई। आगे 1990 से 2000 में चॉकलेट, नमकीन, स्नैक्स और ग्लोबल एक्सपेंशन, अफ्रीका, मेक्सिको। पार्ले ने बस इंडिया तक सीमित रहने से मना कर दिया। पार्ले जी सिर्फ बिस्किट नहीं था, ये इमोशन, कम्फर्ट और एक आदत भी बन गया था। हर लॉकडाउन, हर स्ट्रीट, हर ट्रेन जर्नी में ये बिस्किट साथ था। और सोचो, ये सब एक टेलर का सिंपल आइडिया था, एक सोच से, एक विजन से, हर इंडियन को अपना बिस्किट मिले। ये कहानी सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं है, एक ड्रीम और देशभक्ति की भी है। स्मॉल बिगनिंग्स, जायंट इम्पैक्ट। और अभी यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

जी रंग दे बसंती, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड, और मैं बात कर रही हूँ पार्ले जी की कहानी के बारे में। पार्ले जी सिर्फ टेस्ट और क्वालिटी के लिए फेमस नहीं था, ये हर इंडियन के लिए एसेसिबल बनने के लिए फेमस था। छोटे बजट वाले घर, स्कूल बच्चे, स्ट्रीट वेंडर, सबके लिए बिस्किट अफोर्डेबल था, और यही डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी थी मोहनलाल दयाल की। बिस्किट को महंगा बनाने से फायदा नहीं है बॉस, सबको खाना मिले तभी इम्पैक्ट और लॉयल्टी बनती है। और इसीलिए पार्ले जी ने बहुत लंबे ड्यूरेशन तक प्राइस मेंटेन किया। रिजल्ट, हर इंडियन की चाय का कंपेनियन बन गया, हर ट्रेन जर्नी, हर स्कूल लंच, हर टी स्टॉल के साथ। और इसी अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी ने पार्ले जी को एक नेशनल हैबिट और एक इमोशन से कनेक्ट कर दिया। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

वैसे जब पूरी कोशिश की जाती है तो जीतना मुमकिन हो जाता है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही थी पार्ले जी के सफर की। पार्ले जी का सफर सिर्फ एक बिस्किट बनाने तक सीमित नहीं था, ये कहानी है विजन और स्ट्रगल की। सोचिए, एक 12 साल का लड़का गुजरात से मुंबई आता है सिर्फ सिलाई सीखने, जिंदा रहने के लिए, और वही लड़का मोहनलाल दयाल इंडिया के लिए एक ब्रांड खड़ा करता है जो आज भी हर घर, हर चाय, हर स्कूल लंच का पार्ट है। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने एक आइडिया को कल्चर में कन्वर्ट किया, अफोर्डेबल, एसेसिबल और देशभक्ति से इंस्पायर्ड। और ये तीन पिलर्स ही पार्ले जी को दुनिया भर में फेमस बनाते हैं। और ये भी याद रखिए, ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी फेलियर, एक्सपेरिमेंट और पेशेंस की है। पहली कैंडीज फेल हुई, पहला बिस्किट फ्लॉप हुआ और फिर भी विजन का पीछा नहीं छोड़ा। और इसी वजह से पार्ले जी का मैजिक है हर जनरेशन के साथ कनेक्ट करना, हर इंडियन के लिए फैमिलियर रहना और एक सिंपल स्वीट हैबिट बन जाना। तो अगली बार जब भी आप पार्ले जी के साथ चाय पिए या ट्रेन जर्नी में बिस्किट खाएं, तो अपने बचपन को याद करो और सोचो एक छोटा टेलर, एक ड्रीम और एक देशभक्ति का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। ये था सफर 12 साल के लड़के का, एक देसी बिस्किट ब्रांड का, एक इंडियन ड्रीम का और एक ग्लोबल इंस्पिरेशन का। आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड और मेरा वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आप सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: हटके।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: ब्रह्मफेस्ट 2026 में 20 सितंबर का दिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है बल्कि एक मीनिंगफुल इनिशिएटिव के लिए भी खास है और इस इनिशिएटिव का नाम है रन फॉर कंपैशन। मैं हूं आरजी बलक और रेडियो महारानी है ब्रह्मफेस्ट 2026 का प्राउड रेडियो पार्टनर और रन फॉर कंपैशन को लेकर हमने बात की उन स्टूडेंट से जो इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन रहे हैं ताकि उन्हीं से जान सके कि इस रन के पीछे का थॉट क्या है और लोग इसे किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं।
1: आई एम अरुणिमा चतुर्वेदी एंड MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम अमृता मेडिकल कॉलेज इन फरीदाबाद।
0: ओके, सो आपके अकॉर्डिंग ब्रह्मफेस्ट 2026 का एक मेन अट्रैक्शन रन फॉर कंपैशन है और हमने भी इसके बारे में काफी सुना है, तो थोड़ा बताइए कि ये कंसेप्ट कैसे आया और इसके पीछे थॉट क्या है।
1: तो रन फॉर कंपैशन 2026 एक सिंपल थॉट प्रोसेस था कि रनिंग को सिर्फ फिटनेस से नहीं रख के हम उसे हेल्थ, कम्युनिटी और कंपैशन से कनेक्ट किया जाए। अमृता स्ट्राइडर्स जो हमारे कैंपस का रनिंग ग्रुप है उसमें ही हमने एक्टिव लाइफस्टाइल प्रमोट किया और हमारी जो फाउंडर अमृता आनंदमय उनका भी यही कहना है कि कंपैशन से साथ अगर हम हर चीज करें तो हर चीज अच्छे से होती है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे

0: अच्छा, इसका जो नाम है रन फॉर कंपैशन, ये काफी मीनिंगफुल है। तो इस कंपैशन को लेकर सोसाइटी को जो सोशल मैसेज दिया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: तो रन फॉर कंपैशन का मतलब सिर्फ किलोमीटर्स कंप्लीट करना ही नहीं है, रनिंग बिकम्स अ वे टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर अ लार्जर पर्पस। एंड आवर कम्युनिटीज श्लोक इज लोकाय समस्ता सुखिनो भवन्तु। विद कंपैशन एंड कम सेल्फलेस सर्विस जो हमारे ब्रॉडर स्पिरिट से कनेक्ट होती है, जिससे हम हेल्थ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कंपैशन के थ्रू एक्शन कर सकते हैं।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: और अगर कोई पब्लिक इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहती है तो उनके लिए पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस क्या है?
1: तो इससे आप अमृता कम्युनिटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये पब्लिकली सिर्फ रेस ही नहीं बल्कि अमृता कैंपस कम्युनिटी के साथ जुड़ने का एक एक्सपीरियंस है। तो इस इवेंट में हमारे लिए 5 किलोमीटर कम्युनिटी रन और 10 किलोमीटर रन जो बिगनर्स से लेकर एक्सपीरियंस रनर्स सब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में हमें टी शर्ट और मेडल्स भी प्रोवाइड होंगे और इवेंट एक एनर्जेटिक जुम्बा के साथ स्टार्ट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज सिंपल है, रन फॉर हेल्थ, रन फॉर कम्युनिटी एंड रन फॉर कम्पैशन।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पत्ती चला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई, तो करे रिस्टार्ट।

0: और एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है मेरा कि रन फॉर कंपैशन में अप्रोक्सीमेटली कितने पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं?
1: तो वी आर एक्सपेक्टिंग 600 पार्टिसिपेंट्स एज ऑफ नाउ, सो विच इज अ फर्स्ट लार्ज स्केल इवेंट इन फरीदाबाद फॉर दिस होल रनिंग कम्युनिटी. एंड ये तो हर हॉस्पिटल करवाते ही, पर अमृता में आप अमृता से जुड़ेंगे, आप इसके साथ साथ आउटरीच में और चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, डोनेशंस, एनजीओज, इनके साथ भी आप वर्क कर सकते हैं फ्यूचर में.
0: तो रन फॉर कंपैशन के थ्रू एक सिंपल रन को एक मीनिंगफुल मैसेज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है और शायद इसी वजह से इसका नाम भी अपने आप में एक मैसेज कैरी करता है. और इसी के साथ मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो महारानी.

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जा

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
5: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: ड्रम फेस्ट 2026 का एक्साइटमेंट अब अपने पीक पर है, क्योंकि 20 सितंबर की शाम होने वाली है डीजे नाइट और साथ ही साथ कार्निवल भी, यानी म्यूजिक एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन से भरी एक कंप्लीट इवनिंग। मैं हूं आरजे पलक और रेडियो महारानी है ड्रम फेस्ट 2026 का प्राउड रेडियो पार्टनर। तो इवेंट को लेकर स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट जानने के लिए हमने उन्हीं से बात की और सबसे पहले उन्हीं से सुनते हैं कि 20 सितंबर की शाम आखिर क्या खास होने वाला है।
1: So, my name is Ruchir Shahi Rajput and I am the organizing head of Drum 2016.
0: अच्छा, Drum Fest 2026 में 20 सितंबर की शाम को होने वाला है डीजे नाइट और साथ ही साथ कार्निवल भी, तो इसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ बताइए।
1: तो 20 तारीख का इवेंट जो है वही है जो सब पूरे ब्रह्म इवेंट का पीक है। बेसिकली उसी दिन सारे सबको मौज आने वाली है, मस्ती होने वाली है, बहुत ढेर सारी मस्ती होने वाली है, क्योंकि डीजे करने के लिए कोई रीजन थोड़ी चाहिए होता है। बेसिकली इतना पढ़ पढ़ के, इतने सारे लेक्चर्स एग्जाम के बाद हम खुद बोर हो गए हैं, तो एक रात तो होनी चाहिए जहाँ पे हमारी कॉलेज लाइफ फुल पीक लेवल पे रॉकिंग बन जाए। वो लिरिक्स नहीं है कि कॉलेज के कैंपस को रॉकिंग डिस्को बना दे, तो वही वाला थीम है। बाकी कार्निवल नाइट में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, फूड स्टॉल्स लग रहे हैं, मैजिशियंस आ रहे हैं, टैरट कार्ड रीडिंग होगी, पूरा मेला वाला जो कार्निवल एक्सपीरियंस होता है वो सब होगा, मैजिशियंस भी होंगे। एंड देन हमारे पास आ रहे हैं डीजे प्रखर, हु इज़ अ ग्रेट डीजे एंड ही इज़ ऑल्सो MBBS स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हमारा मेडिको वाला भी कनेक्ट है उनके साथ and he's doing a great performance there then।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: क्लीन रहो।
1: हाँ, सोचो जरा उस नदी के बारे में जहाँ कल फिर कोई पानी भरेगा। जिस पानी से जीवन चलता है उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो। उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल रखो।

0: अच्छा डीजे और मेडिकल, नॉर्मली ये दोनों वर्ड्स एक साथ सुनने को नहीं मिलते, तो ये डीजे टू मेडिकल का ये कनेक्शन आपको कैसा लग रहा है?
1: सही है ना, लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ लेक्चर्स और किताबों के बाहर भी एक दुनिया होती है, तो लोग और भी साइड करियर एक्सप्लोर करेंगे, किसी को डीजे बनना हो तो बन भी जाएगा इंस्पायर होकर।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: What's up, dog? Shit, brother, shooting in the wind. What's good with it? Watch out, man. Watch out, DLG coming, man.
3: Oh, word.
2: They say he the GOAT. He all the way tapped in.
3: Yeah, dog. He killing the game.
2: Oh, DLG, watch out.

0: का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहां सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो।

0: गाना बजा दूं।
1: अच्छा, जब डीजे नाइट हो और कार्निवल हो तो क्राउड तो डेफिनेटली एक्साइटिंग होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि कितना क्राउड एक्सपेक्टेड है और ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैसा होने वाला है?
2: क्राउड तो क्रेजी आने वाला है। हमारे खुद के कैंपस में 3,500 लोग हैं, देन ऊपर बाहर के कैंपस से भी हमने ओपन इन्वाइट किया है, ऑफ कोर्स आफ्टर अ पास एंड बैंड। तो सिक्योरिटी इशू का थोड़ा सा डर तो है, लेकिन मजा तो उसी में आएगा।
1: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक

तो एक्साइटमेंट तो क्लियरली सुनाई दे रही है। तो 20 सितंबर की शाम म्यूजिक कार्निवल और सेलिब्रेशन के साथ ब्रह्म फेस्ट 2026 में होने वाली है एक मेमोरेबल इवनिंग। मैं हूँ आरजे पलक और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।

0: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
1: नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, हम कुछ लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं पूरे ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम के लिए। ये लोग ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स कहलाते हैं जो कि एक्चुअल ट्रांसप्लांट को कोऑर्डिनेट करते हैं। जो डोनर अपने ऑर्गन्स डोनेट कर रहा है उसके परिवार वालों को समझाना, उनको कन्विंस करना, प्लस जो रेसिपिएंट्स हैं उनको टाइम पर आने का कहना, उनके सारे अरेंजमेंट्स देखना, पेपर वर्क देखना, लीगल प्रोसीजर्स देखना, ये सभी काम ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। ये काम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल वर्क है वो है फैमिली से बात करना ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जब किसी की मृत्यु होती है तो पूरा परिवार गमगीन होता है, लेकिन उस टाइम पर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स ही फैमिली से बात करते हैं और उनको अंगदान के बारे में बताते हैं, उसके महत्व के बारे में बताते हैं। तो आज की हमारी जो मेहमान हैं, आपसे मैं उनका परिचय करवा दूं। इनका नाम है आरती गोखले जी। ये पुणे की रहने वाली हैं और ZTCC पुणे में सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं। आरती जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में।
2: नमस्कार। नमस्कार सौरभ
1: जी। आरती जी, जैसा कि हमारे श्रोताओं को हम बताना चाहते हैं कि अंगदान का महत्व क्या होता है, और कभी भी जब अंगदान होता है तो पेपर में जब न्यूज पढ़ते हैं तो बहुत सादी सी न्यूज रहती है कि इस व्यक्ति का अंगदान किया गया, लेकिन वो सादी सी न्यूज के पीछे कितने सारे लोगों के एफर्ट्स जुड़े होते हैं, कितनी सारी मेहनत जुड़ी हुई होती है। तो आप थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएं, हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताएं कि अंगदान का जो काम है वो कैसे पूरा सिस्टम वर्क करता है।
2: अच्छा, अंगदान जो होता है वो पहले श्रोताओं को ये जान लेना जरूरी है कि जो पेशेंट ब्रेन डेड यानी मेंदू मृत अवस्था में जो रहते हैं उन्हीं मरीजों का, या जो पेशेंट रहते हैं जो कोई भी हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट में माने ICU में एडमिट रहते हैं तो उनका ही अंगदान हो सकता है। अदरवाइज जिनके घर में डेथ होती है या सांस रुकती है और घर में डिक्लेयर किया जाता है नेचुरल डेथ है तो उस पेशेंट का कोई अंगदान नहीं हो सकता है, बट उनका टिश्यू डोनेशन होता है, जैसे कि आंखें हैं या त्वचा दान है या फिर बॉडी डोनेट कर सकते हैं। बट जो अंगदान की मूवमेंट है वो जो हमारा एक्ट है 1994 का ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, उसके मुताबिक इसका कंसेप्ट चेंज हुआ है। क्लिनिकल डेथ ऐसे हम बोल सकते हैं उसको, और जिस जैसे जिस मरीज का ऐसे क्लिनिकल डेथ होता है उसको डिक्लेयर किया जाता है और फिर अंगदान की प्रोसेस कंप्लीट होती है।
1: जी बिल्कुल, आरती जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और आके ZTCC के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी
2: जरूर जरूर।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से

रेडियो महारानी कुछ

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: दोस्तों हम वापस आ गए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं आरती गोखले जी से, जो कि पुणे की रहने वाली हैं और ZTCC में सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं। हम बात कर रहे हैं अंगदान के बारे में। तो आरती जी ने अभी पिछले ब्रेक में जाने से पहले अंगदान के महत्व को समझाया। आरती जी, अब हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ZTCC क्या है और इसका महत्व क्या है।
2: अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर सौरभ। ZTCC है, जैसे कि मैंने अभी पहले ब्रेक के पहले बताया कि हम हमारा अंगदान कर सकते हैं या टिश्यू डोनेट कर सकते हैं या बॉडी डोनेट कर सकते हैं, बट उसमें जो अंगदान कर सकते हैं, तो समझो एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, जो ब्रेन डेड है, उसके रिलेटिव ने कंसेंट दे दिया फॉर ऑर्गन डोनेशन कि हम हमारे ये मरीज का जितने भी चाहे यूज आए, मतलब काम आए किसी के, हम सब ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। तो उसके बारे में प्रोसेस क्या है, ये जो दान किए हुए ऑर्गन्स है, अंग है, वो किसको जाएंगे, किसको हार्ट बिठाया जाएगा, किसको लंग जाएगा, किसको किडनी और किसको लिवर, तो ये हु विल डिसाइड, ये फैर कौन करेगा। तो इसीलिए हमारी नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि नाम है उसका नोटो। नोटो के अंदर 5 रोटो काम करते हैं पूरी भारत देश में, और रोटो में सोटो, अभी आप सोचेंगे ये क्या है नोटो रोटो सोटो, तो उसका फुल फॉर्म ऐसा है, नोटो माने नेशनल, रोटो माने रीजनल लेवल पे, सोटो माने स्टेट लेवल पे। तो अभी नाउ वी विल कम टू ZTCC पुणे। तो सोटो का एक पार्ट है ZTCC पुणे, तो पूरा सोटो महाराष्ट्र जो है वो 4 ZTCC में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि पुणे में है, मुंबई में है, नागपुर में है और औरंगाबाद में है। तो ये चारों ZTCC में जिन मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत रहती है, उन पेशेंट का नाम यहाँ पे लिस्ट में रजिस्टर किया जाता है हर एक हॉस्पिटल से। जैसे कि पुणे जोन के अंदर 45 हॉस्पिटल्स हैं जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, और वहाँ के तकरीबन 5,000 के करीब पेशेंट हमारे पुणे ZTCC में लिस्टेड है फॉर वेरियस ऑर्गन, मतलब जैसे कि 1,000 के ऊपर पेशेंट्स हैं जिनको किडनी की जरूरत है, अराउंड 500 के करीब पेशेंट्स हैं जिनको लीवर की जरूरत है, ऐसे सब पेशेंट्स हैं उनका लिस्ट, अराउंड 500 के करीब पेशेंट्स हैं जिनको लीवर की जरूरत है, ऐसे सब पेशेंट्स हैं उनका लिस्ट मेंटेन करना, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम लेना, और ज्यादा महत्वपूर्ण काम है जब इन्हीं हॉस्पिटल में अगर कोई ब्रेन डेड पेशेंट आता है, तो ये सब जैसे कि मतलब एग्जांपल के तौर पे आप लोग ही एक हॉस्पिटल है, ए हॉस्पिटल है, ए हॉस्पिटल में एक ब्रेन डेड डोनर है, उसका कंसेंट हो गया है, तो उसके ऑर्गन मतलब किसको किडनी मिलेगी, किसको लीवर डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको लंग्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये सब हमारे ZTCC के अथॉरिटीज में तय किया जाता है। एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कंसेंटेड ऑर्गन है उसका एज पर द लिस्ट ZTCC एलोकेट करते हैं।
3: हॉस्पिटल कोई अपने बेसिस पर किसी को ऑर्गन नहीं दे सकता, हॉस्पिटल ZTCC को इन्फॉर्म करेगा एंड ZTCC डिसाइड करेगी।
2: करेक्ट बट हर एक हॉस्पिटल को जो लाइसेंसेस है उनके मुताबिक वो एक एक ऑर्गन रख सकते, मतलब उनके खुद के पेशेंट के लिए वो ट्रांसप्लांट के लिए रख सकते हैं, बट फिर भी वो जो उनका पेशेंट है ऐसा अलग नहीं रहता है, वो भी ZTCC के लिस्ट में रजिस्टर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे मेरे पहचान वाला एक कोई है तो पुणे के एक हॉस्पिटल में है और उनको किडनी चाहिए, तो डोनर अगर आ गया तो मैं उनको किडनी दे दूँ, नहीं ऐसा नहीं चल सकता। तो ये सब सिस्टमेटिक है, हमारा ZTCC का क्लाउड बेस्ड ऐप है, उस ऐप के जरिए हम लोग पूरा लिस्टिंग वगैरह और उसका स्कोरिंग सिस्टम है। आरती गोखले और मैनेजिंग कमेटी ऑफ ZTCC कैनॉट डिसाइड, हम लोग नहीं तय कर सकते कि इसको ही लीवर मिलना चाहिए, इसको ही किडनी मिलना चाहिए। नाउ ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है जो मेडिकल पॉइंट्स है, स्कोरिंग सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में हमने डिसाइड करके दी है, उसके अनुसार ये लिस्टिंग प्रोसेस होता है। तो हमें यहाँ बैठ के ZTCC के ऑफिस में बैठ के ये 5000 लोगों में से पेशेंट जो रिसिपिएंट है जिनको ये ऑर्गन मिलकर ट्रांसप्लांट होने वाला है वो कौन से जात का है, वो अमीर है या गरीब है, कहाँ रहता है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें कुछ पता नहीं होता, हमें सिर्फ पता होता है उसका मेडिकल इलनेस क्या है और उसको किस ऑर्गन की जरूरत है।
3: जी बिल्कुल आरती जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: दोस्तों हम वापस आ गए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं आरती गोखले जी से, जो कि पुणे की रहने वाली हैं और ZTCC में सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आरती जी, आपने ये जो बताया कि स्कोरिंग सिस्टम होता है, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा इमरजेंसी में तुरंत जरूरत है तो, और उनका वेटिंग लिस्ट में रजिस्ट्रेशन बहुत पीछे है, नाम उनका बहुत पीछे है वेटिंग लिस्ट में, तो अगर उनको जरूरत है तो उनकी स्कोरिंग के आधार पे उनको भी पहले किडनी मिल सकती है या पहले कोई ऑर्गन मिल सकता है?
2: नहीं, अभी देखो हर एक ऑर्गन का एक सुपर अर्जेंट वेटिंग लिस्ट होता है, इसके लिए भी मेडिकल क्राइटेरियाज है, जैसे कि लीवर के लिए है, हार्ट के लिए है, लंग्स के लिए है, वो सुपर अर्जेंट मतलब पूरे देश में उसके अलर्ट दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई सुपर अर्जेंट पेशेंट है, ALF का पेशेंट है, तो मतलब अक्यूट लीवर फेल्योर का है, या हार्ट का पेशेंट है जिसको जल्द से जल्द लीवर या जल्द से जल्द हार्ट मिलने की मतलब मिला तो अच्छा है, जरूरी है, नहीं तो पेशेंट हम खो सकते हैं। इसके लिए उसका सुपर अर्जेंट का क्राइटेरिया अगर वो पेशेंट फुलफिल करें तो उसको पूरे देश के किसी भी कोने से ऑर्गन ऑफर हो जाता है ऑन टॉप प्रायोरिटी।
1: जी,
2: बट उसका मेडिकल क्राइटेरिया है, मतलब ऐसे हम नहीं डिसाइड कर सकते कि अरे ये सिक है पेशेंट, इसको बहुत जरूरत है, ऐसा नहीं। मतलब हम इमोशनली नहीं उसमें इन्वॉल्व हो सकते। इमोशनली अगर देखा जाए तो हर एक पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है जो हमारे लिस्ट पे है, बट जैसे ज्यादा सिक है मेडिकल पॉइंट से उसको ये ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन टॉप प्रायोरिटी, पूरे देश में अलर्ट दिए जाते हैं इसके बारे में।
1: बिल्कुल आरती जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
3: पट्टी को जाके बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई, तो करी

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: दोस्तों हम वापस आ गए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं आरती गोखले जी से, जो कि पुणे की रहने वाली हैं और ZTCC में सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं। आरती जी, हमें कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं और लोग, हम जब उनको वेटिंग लिस्ट के बारे में बताते हैं, पूरे सिस्टम के बारे में बताते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि एवरेज वेटिंग टाइम कितना रहता है।
2: एवरेज वेटिंग टाइम इज अगेन, मतलब हर एक ऑर्गन का अलग अलग है। जैसे कि किडनी को देखा जाए तो 2 या 3 साल तो कम से कम लगते ही है। लीवर और हार्ट के लिए संभावना ज्यादा है, जल्दी मिल सकता है, मतलब लीवर भी जल्दी मिल सकती है, हार्ट भी जल्दी मिल सकता है, बट किडनी के लिए एवरेज वेटिंग टाइम तो ज्यादा है, 2 से 3 साल तक तो लगते ही है।
1: और कोई भी पेशेंट डायरेक्ट ZTCC में रजिस्टर नहीं कर सकता वेटिंग लिस्ट में?
2: नहीं कर सकता। उनको हॉस्पिटल, हमारे फॉर्म्स है, कंसेंट फॉर्म्स है, सब उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब स्कैन होके वेब सिस्टम पे आते हैं एंड देन एवरी डे मॉर्निंग 9 o'clock एंड अगेन गोइंग बैक टू होम एट अराउंड 5 o'clock वी सैंक्शन दोस फॉर्म। हम वो दिन में 2 बार सैंक्शन करते हैं, बट आना है हॉस्पिटल के थ्रू ही, डायरेक्टली ZTCC में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है।
1: अगले शो में हम जल्दी ही आपके सामने वापस उपस्थित होंगे एक नए हीरो को लेके। धन्यवाद आरती जी।
2: धन्यवाद डॉक्टर सौरभ।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही अक्सर सबसे पहले फियर और अनसर्टेनिटी माइंड में आती है, लेकिन कैंसर के बारे में सिर्फ डरना नहीं, समझना और अवेयर रहना भी उतना ही जरूरी है। कैंसर के कई टाइप्स होते हैं और हर कैंसर का एक्सपीरियंस और ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में हो रहे अनयूजुअल चेंजेस को इग्नोर करना, टाइमली मेडिकल एडवाइस लेना और एप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग को समझना अर्ली डिटेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में कैंसर के बेसिक से लेकर उसके रिस्क फैक्टर, वार्निंग साइन, अर्ली डिटेक्शन और आज के मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शन। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज डॉक्टर अभिषेक बंसल, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल एनकोलॉजी फ्रॉम सूरज प्रकाश हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, आज पोषण की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कैंसर को किस तरह से समझा जाए, एक सिंपल लैंग्वेज में हमें बताइए। और साथ ही अगर कैंसर की मैं बात करूं, बॉडी में कैंसर डेवलप होने के पीछे क्या प्रोसेस होता है और क्या हर कैंसर एक जैसा होता है, आज कैंसर के कौन से टाइप हैं जो कॉमनली देखने को मिल रहे हैं।
1: आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। मैं बताना चाहूंगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ही जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, प्रोलिफरेट जिसको कहते हैं, बढ़ते ग्रोथ करते चले जाते हैं जिसपे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो ऐसा एक प्रोसेस चालू हो जाता है जो अपने आप मल्टीप्लाई या होता रहता है और उसमें जगह सेल्स बढ़ते चले जाते हैं और वो पहले आसपास के एरिया को इन्वॉल्व करते हैं और फिर वो देके किसी दूसरे ऑर्गन में भी चले जाते हैं। हर कैंसर एक जैसा तो नहीं होता, मैं कहूंगा हर कैंसर बहुत यूनिक होता है। हर कैंसर मैं कहूंगा 50-60% प्रोसेस हो सकता है सेम हो, लेकिन 40% उसका आधुनिक हर कैंसर की साइट पर डिपेंड करता है और वो कैसे आगे बढ़ता है, कहाँ जाता है, कौन से एरिया में जाता है, कब वो और दूसरे किस ऑर्गन में जाता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है। दूसरा, हर कैंसर का डायग्नोसिस में अलग अलग तरीके के टेक्निक होती हैं और टेक्निक के बाद हर कैंसर का इलाज भी डिफरेंट होता है। तो जैसा मैं कहूँगा, इसको मैं दो कैटेगरी में बताना चाहूँगा इस आंसर्स को। तो अगर मैं बात करूँ मेल्स में, तो मेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारी इंडिया में ओरल कैविटी का कैंसर और उसके बाद ओरल कैविटी या गले का कैंसर जो तंबाकू सेवन या खैनी खाने से होता है, क्योंकि हमारे देखा गया हमारे इंडिया में काफ़ी लोग इसका उत्पन्न करते हैं, जो लो सोशो मिडिल क्लास है उसमें काफ़ी लोग ये सब खाते हैं और इसके वजह से ये कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद मैं कहूँगा कि फेफड़े का कैंसर जो उसको फॉलो करता है और लोअर डाउन में मैं बोलूँगा आंतों का कैंसर और पेट का कैंसर। और मैं महिलाओं में भी बताना चाहूँगा, फीमेल्स में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है जिसको कहते हैं स्तन का कैंसर, और उसके बाद अंडेदानी का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये तीन कैंसर हमारे इंडिया में ग्लोबोकॉन डाटा जो है जो हर साल छपता है उसमें सबसे कॉमन पाया जाया गया है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपने हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं कैंसर के बारे में और ये बताया है कि कैंसर आखिर होता क्या है, किस तरह से हमारी बॉडी में फैलता है और किस तरह से हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल हैं आज मेरे पास आपसे जानने के लिए, लेकिन मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर से आज हम बात कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में। सो डॉक्टर, बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स एंड प्रिवेंशन को लेकर। डॉक्टर, कैंसर को लेकर एक कॉमन सवाल होता है कि आखिर इसका रिस्क किन चीजों से बढ़ता है, पहले हमें ये बताइए। और साथ ही बताया जाता है स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, पॉल्यूशन या फिर फैमिली हिस्ट्री। ये सारे जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, इनका कितना रोल हो सकता है कैंसर का हमारी बॉडी में आने तक। और अगर मैं बात करूँ अपनी डेली लाइफस्टाइल में, हम ऐसे कौन से प्रैक्टिकल चेंजेस करके कुछ कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं।
1: जैसे आपने सारे कारण बोले, सारी कारण ये कैंसर के रूप का, जिसमें सबसे कॉमन मैं बोलूंगा कि एडिक्टिव बिहेवियर या ड्रग अब्यूज, इसको कहते हैं स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन जो हम करते हैं, और आजकल जो इतनी मिलावट है खान पीन में, वो भी एक बढ़ता कारण बन गया है। और जो कॉजेज हैं जिसको कहते हैं ओबेसिटी और या अल्कोहल इनटेक, ये भी कुछ कुछ कैंसर में एक जड़ बन सकते हैं। जैसे अल्कोहल से जनरली लिवर का कैंसर और पेट का कैंसर एसोसिएटेड है, और ओबेसिटी जिसको कहते हैं मोटापा, उसमें जनरली फूड पाइप का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर वो एसोसिएटेड है। और कुछ और कारण होते हैं जिसको कहते हैं जेनेटिक कॉज, जो अपने हम इनहेरिट करते हैं, वो कुछ ऐसे जीन्स हम इनहेरिट करते हैं जिसकी वजह से वो भी एक कैंसर का रिस्क बढ़ा देते हैं, और स्तन का कैंसर और अंडेदानी का कैंसर। और कुछ कैंसर हैं जो आंतों के कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं, और कुछ कैंसर हैं जो गुर्दे के कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं, तो वो जेनेटिक टेस्टिंग में हेल्प करती है, हम उस हिसाब से इलाज करते हैं। आई थिंक इसका आंसर मोर और लेस सेम है, चाहे वो दिल की हार्ट डिजीज हो, चाहे वो दिमाग का हार्ट ब्रेन स्ट्रोक हो, या कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं, या मैं कहूंगा कि कोई भी बीपी हो या शुगर हो, बेसिकली इन, या मैं कहूँगा अब कैंसर, इन सब में बेसिक है कि हम अपना खान पीन ठीक रखें, हम रोज फ्रेश वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का और फ्रूट्स का सेवन करें, हम टोबैको को इंटेक कम करें, अल्कोहल का इंटेक कम करें, और लगभग 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज वीक में 5 बार जरूर करें, और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपना वेट कंट्रोल में रखें, और योगा या मेडिटेशन अगर किसी को लगता है तो वो करें। और इन सब चीजों से हम अपना सेहत का ध्यान रखेंगे तो सारी जो इनसे उभरती हुई जो डिजीज है, चाहे दिमाग की, चाहे दिल की, चाहे पेट की, चाहे कैंसर, सब मुझे लगता है खत्म हो जाएंगी।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट। और जैसे कि आपने बताया, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट, इवन फिजिकल इनएक्टिविटी, ये कुछ चीजें हैं जिनका हम ख्याल रखें तो अपने लाइफस्टाइल को हम बेहतर बनाकर अपनी बॉडी को और भी ज्यादा हेल्दी कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, ताकि हम किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सके। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

0: शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज आर जेंसी और आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में कैंसर के बारे में। सो डॉक्टर, हमने कैंसर के बारे में जाना, रिस्क फैक्टर्स के बारे में जाना, प्रिवेंशन के बारे में जाना, लेकिन अब बात करते हैं अर्ली डिटेक्शन एंड वार्निंग साइन के। कैंसर के केस में अर्ली डिटेक्शन बार बार सुनने को मिलता है, लेकिन अगर मैं एक आम पर्सन की बात करूँ तो कैसे पता चले कि बॉडी में कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनयूजुअल ब्लीडिंग, परसिस्टेंट और साथ ही लॉन्ग लास्टिंग कफ, ये कुछ सिम्टम्स हैं। कब इन्हें सीरियस लेना चाहिए और कब जाकर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए? और अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूँ तो कैंसर स्क्रीनिंग का क्या रोल होता है हमारी जिंदगी में?
1: आई थिंक ये सारे लक्षण हैं जो कैंसर के बारे में बताते हैं, जैसे लंबे टाइम से खांसी रहना और खांसी में खून आना, या लैट्रिन में खून आना, या पेशाब में खून आना, या बच्चेदानी के रास्ते से खून आना, या कोई गांठ है जो बढ़ती चली जा रही है या वो भर नहीं रही, या लंबे टाइम से बुखार आना जो ठीक नहीं हो रहा, या किसी का वजन कम हो रहा है, या किसी को पसीने आते हैं। मैं कहूँगा दस्त लग जाना जिसका कोई आंसर नहीं मिल रहा, या किसी को कवच बहुत ज़्यादा रहना, या किसी को रात में बार बार पेशाब का जाना, तो ये सारे कुछ साइंस हैं जो कैंसर की तरफ हमें ले जाते हैं। बट ये कैंसर के साइंस कुछ बिनाइन कंडीशन जो होती हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं, तो ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर ये अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज हैं जो ठीक ही नहीं हो रहे, या खून अगर बढ़ी नहीं रहा, या खून बहुत ज्यादा हो रहा है, या सफेद पेशियां बहुत ज्यादा हो रही है, या प्लेटलेट बहुत कम या बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये भी एक तरह का खून का कैंसर हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा, और अगर ये ठीक नहीं होता तो हमें कैंसर का डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली बन सकता है।
0: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, अगर कोई भी सिम्टम आपको आपकी बॉडी में नजर आता है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, तुरंत जाकर अपने डॉक्टर को मिलिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि ये सिम्टम कब से आपकी बॉडी में है, इससे आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अपनी बॉडी को प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि कहा जाता है कि बीमारियां अगर इनिशियल स्टेज पर ही दिखा दी जाए तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखिए और मिलते हैं कुछ ही देर में इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: नहीं
1: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
0: आप बात में यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, ट्यूबलाइट
1: गिर गया। साले इतना हंसिया, तू कूद गया?
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
1: क्यों
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
1: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद

0: मोशन की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजू अंजलि आपके साथ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक, जिनसे आज हम जान रहे हैं कैंसर के बारे में। सो डॉक्टर, ने अर्ली डिटेक्शन वार्निंग साइन के बारे में बात की, अब बात करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में। कीमोथेरेपी से मॉडर्न थेरेपीज तक आजकल बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं ट्रीटमेंट में। खासकर अगर मैं बात करूँ, कैंसर ट्रीटमेंट का नाम आते ही सबसे पहले कीमोथेरेपी का ख्याल आता है, लेकिन आज कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और साथ ही हार्मोनल थेरेपी जैसे ऑप्शंस भी हैं। इन ट्रीटमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है और साथ ही डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं किस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सूटेबल होगा?
1: देखिए, इस विषय में मैं बोलना चाहूंगा कि कैंसर का इलाज बेसिकली तीन तरीके से होता है, जिसको हम गोल्ड पहले कहते हैं कीमोथेरेपी, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करता है जो मैं हूँ, दूसरा होता है ऑपरेशन से जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जरी से होता है, और तीसरा होता है रेडियोथेरेपी। तो जैसे आपने बोला कीमोथेरेपी के बारे में, कीमोथेरेपी आज से 25-30 साल 40 साल से है, और आज की डेट में कीमोथेरेपी, इतने प्रकार की कीमोथेरेपी आ चुकी हैं कि सारे कैंसर का इलाज किसी न किसी कीमोथेरेपी से होता है। और आज की डेट में जो न्यूअर अपडेट्स आए हैं उसमें आ गई टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी। तो सबसे लेटेस्ट जो यहाँ पे आई है उसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी, और इम्यूनोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं या टारगेटेड थेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कीमोथेरेपी से बहुत कम है। ना तो इनसे बाल झड़ते हैं, ना इनसे उल्टी आती है, ना इनसे दस्त लगते हैं, ना इनसे पेट खराब होता है, और ये बहुत ही हल्की थेरेपीज हैं। और आज की डेट में टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी सबसे ज्यादा यूज हो रही है और कीमोथेरेपी बैक होती जा रही है, और इनको हम आज की डेट में काफी यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा कैंसर है और क्या वो किस टाइप का है, और कुछ हम अगर आधुनिक टेस्ट करा के अगर वो फिट होता है उनके क्राइटेरिया में तो हम ये थेरेपी यूज कर रहे हैं, और इनके रिजल्ट्स आज की डेट में बहुत बेटर हैं, हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। थैंक यू
0: सो मच डॉक्टर। और आज की कन्वर्सेशन में आपने कैंसर को लेकर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज की बातों से एक इम्पोर्टेंट मैसेज सामने आता है, कैंसर के नाम से डरना नहीं बल्कि उसके रिस्क फैक्टर्स, वार्निंग साइन और अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में अवेयर रहना जरूरी है। बॉडी में अगर कोई अनयूजुअल या फिर परसिस्टेंट चेंज नोटिस हो तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर को दिखाएं, कभी भी उसे इग्नोर ना करें, बिकॉज टाइमली मेडिकल एडवाइस लेना इम्पोर्टेंट है। और सबसे जरूरी बात, इंटरनेट के मिथ्स या फियर के बेसिस पर नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस और राइट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन ले। और इसी के साथ बस ये कहना चाहती हूँ, अवेयर रहे, इन्फॉर्म्ड रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। फिलहाल मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है आज दिल शायराना, जहां मैं आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ पोइट्रीज की, लिटरेचर की। और मैं अकेली नहीं होती हूँ, तो आज भी मैं अकेली नहीं हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में है भावना जी, जो कि एक पोइटेस हैं, तो जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: शुक्रिया आपका बहुत बहुत, रेडियो महारानी में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज ये इस तरह का ये जो दिन आया है, जो मैं यहाँ बैठी हूँ, उसके लिए मैं आपका सपना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और नाम मेरा भावना सेठ है, पर लेखन क्षेत्र में मैं अपना नाम सिंपल भावना बताती हूँ।
0: तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पोइट्री में कैसी आपकी जर्नी रही, कैसे सोचा कि आपको लिखना चाहिए, ख्याल क्या?
1: ये ख्याल ऐसा कि मैं पहले तो मैं शिक्षिका हूँ, लाइन ही मेरी ऐसी है कि बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड लगातार रोज बुक्स पढ़ती हूँ हिंदी संस्कृत में। तो उसमें जो कविताएं आती हैं उनको देखकर लगता है कि क्या हम भी ऐसा लिख सकते हैं। और साथ साथ अध्यात्म की तरफ जाते जाते जब लगा कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कि ये जो पुराने ग्रंथ हैं उन्हें क्यों नहीं पढ़ा गया, इतना पढ़ाया है मैंने बच्चों को, तो क्यों ना इस पुराने ग्रंथों को भी पढ़ा जाए। तो जब अध्यात्म की तरफ गई तो और ज़्यादा उस चीज़ को निखार मिला, और मैंने अपने शब्दों में रामायण जो है उनको मैंने अपने शब्दों में कविताओं के रूप में परिवर्तित करने की एक कोशिश की, और वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया आ गया है, और सोशल मीडिया के आ जाने से आपको फ़ोन पर कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप देखते हैं, तो आपको ज्ञान और बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। और जब मैंने देखा कि मेरी ये कला यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आकर के दिखाई जा सकती है, सुनाई जा सकती है, तो मुझे लगा कि मैं भी क्यों ना इस सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ जुड़ूँ और अपनी कविताओं को सामने रखूँ। तो तब से ये सफ़र सही मायने में, तो सोशल मीडिया को मैं बार बार थैंक यू बोलती हूँ कि हमारे जैसे लोग जो सिर्फ पन्नों पर ही लिखकर रह जाते हैं अपनी कविताओं को, और फिर वो न जाने कहाँ खो जाती हैं, तो ये सोशल मीडिया आ जाने से उन कविताओं को एक नया रूप मिला है, हमारे जैसे लोगों को एक मौका मिला है, और दूर दूर तक जाकर के जो है कहने का, जैसा कि आज महारानी रेडियो में आने का मौका मिला, तो ये तो एक इंटरनेट का ही कमाल कहूँगी जो मेरे जीवन में ये दिन आया है।
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया ने वैसे काफी कुछ बदला है लिटरेचर के क्षेत्र में भी। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना। मेरे साथ आज भावना जी मौजूद है स्टूडियो में, जो कि एक पोइटेस हैं। इनसे हम बातें कर रहे हैं लिटरेचर की खूबसूरती के बारे में। तो अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, जब हम कुछ भी चुनते हैं अपने लिए, कोई भी फील्ड चुनते हैं, तो हम एक अपना मेंटोर या एक आइडल चुनते हैं, तो आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली, किसको ज्यादा पढ़ा या सुना?
1: मैंने बहुत सारे कवियों को सुना है। ज्यादातर मैं कहूँ कि मैंने स्पेशली कोई बुक्स पहले स्टार्टिंग में पढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बच्चों को पढ़ाया तो उसमें हरिवंश राय बच्चन जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी आए और दिनकर जी आए। तो इन सब की कविताओं को पढ़ते हुए फिर जब मेरा ये सफर शुरुआत हुई, तो मैंने सबसे ज्यादा हरिवंश राय बच्चन जी, कुमार विश्वास जी और दिनकर जी की कविताओं को पढ़ा है मैंने सबसे ज्यादा। और उन्हीं से मोटिवेट होकर के मुझे लगा कि और ज्यादा अपनी कला को निखारा जा सकता है, क्योंकि उनके शब्दों में बहुत गहराई है।
0: हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं हैं, लिटरली उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैम फिलहाल यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है आज दिल शायराना. मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में भावना जी बनी हुई हैं जो कि एक पोइटेस हैं. तो मैम एक और सवाल है, कहते हैं ना कि हर एक पोइट का या पोइटेस का एक मूड होता है, उसको लिखने का जो होता है. तो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि जो कविता होती है वो किस चीज़ से पैदा होती है, आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशन से या इमोशन से?
1: कविता पैदा होती है, ये अपने खुद के इमोशंस सबसे ज़्यादा काम करते हैं. जब हम अपने इमोशंस को तो महसूस करते ही करते हैं, लेकिन जब हमें हर किसी को देख करके भाव आने लग जाते हैं, जब हम लोगों के दुखों के साथ जुड़ जाते हैं मन से, जब हम लोगों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने लग जाते हैं, तो यकीन मानिए कविता मन से अपने आप पैदा हो जाती है.
0: जी बिल्कुल, वैसे ये बात तो आपने सही कही है मैम. यहाँ पर वक्त है गाने का. गाने के बाद फिर से लौटेंगे. शो है आज दिल शायराना.

Hi, I'm Dr. Tanu. I am a MD medicine diabetologist. I've been practicing for last 10 years. And yes, I also run a supplement company. I am a fellow in regenerative medicine. And my advice today comes for women who have done their first inning and now they're in their second inning. पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेज ऑफ योर लाइफ वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी. अब बहुत ज़रूरी है कि हम पाँच चीज़ों पर ध्यान दें. पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर. सेकेंड, प्रोटीन. एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक यू नो 40 साल की ज़िंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें. अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर. थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती. यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर यू नो. आपको और अच्छे क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है. फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है. ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो. इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से. दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद द राइट पीपल. पांचवी चीज, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा यू नो आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपका वेट गेन होना, आपका बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी. ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है. मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये पांच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. थैंक यू.

0: Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है आज दिल शायराना. मेरे साथ आज स्टूडियो में है भावना जी जो कि एक पोइटस है. और मैम मेरा एक और सवाल है, वैसे सवाल नहीं है ये, बिकॉज बातों का सिलसिला जारी है और हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं आपसे, लेकिन आपकी रचनाओं पर अब बढ़ते हैं. तो कोई आपकी रचनाएं जो आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें तो हम आपसे ज़रूर सुनेंगे.
1: मैं अपनी एक कविता रखती हूँ. सबसे पहले चार लाइनों से शुरुआत करती हूँ कि मेरा कलम के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ. तो कलम और मेरा रिश्ता कुछ इस कदर पुराना है कि हम दोनों के बीच में अब सखियों सा ताना बाना है. जब आई ये मेरी जिंदगी में तब सोचा ना था ये कभी कि इस कलम से अब रिश्ता ताउम्र निभाना है. इस कलम से अब रिश्ता ताउम्र निभाना है.
0: क्या बात है मैम, बहुत खूबसूरत. फिलहाल वक्त है गाने का. गाने के बाद फिर से लौटेंगे. शो है आज दिल शायराना.

कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगे, और ऑनेस्टली ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए, क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

0: फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना। मैं आपके साथ हूँ गीत, और हमारे साथ स्टूडियो में भावना जी हैं, जिनसे आज हमने ढेर सारी बातें की हैं लिटरेचर के बारे में, पोइट्रीज के बारे में। तो मैम, जाते जाते आपका क्या मैसेज है हमारे लिसनर्स के लिए?
1: यही कहना चाहूंगी कि जीवन में कभी हार नहीं मानना, समय कैसा भी आ जाए आपके ऊपर, कभी समय जीवन सब तरह के रंग दिखाता है, कभी आपको बहुत खुशियाँ दिखाता है और कभी एकदम सागर

0: डुबो देता है कि कश्ती पूरी ही नहीं अंदर चली जाती है। लेकिन उस ऊपर वाले का हाथ मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए, अपना धैर्य मत छोड़िए। यदि आप इन सब चीज़ों को साथ रखेंगे और ऊपर वाले को हमेशा याद रखेंगे, उससे हमेशा अपनी प्रार्थनाएं करते रहेंगे, तो मुझे लगता है आपकी कश्ती खुद ब खुद सागर से उठकर ऊपर आ जाएगी।
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आप मेरे साथ जुड़ी हैं और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, वंस अगेन थैंक यू। और आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।
1: रेडियो महारानी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कुछ मुलाकातें सिर्फ एक इंटरव्यू तक नहीं होती, बल्कि वो एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां हम किसी पर्सनालिटी को उनके काम से थोड़ा परे जाकर जानने की कोशिश करते हैं। और आज की खास मुलाकात भी कुछ ऐसे ही होने वाली है। आज मेरे साथ हैं एक कंटेंट क्रिएटर जिनके वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे, जिनकी बातों में थोड़ी बेबाकी है, थोड़ा ह्यूमर है और अपना एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। तो आज उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके कुछ इंटरेस्टिंग साइट्स को जानेंगे। मैं हूं आरजे पलक और मेरे साथ हैं यश शर्मा, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पर अपने यूनिक कंटेंट और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मिलियंस में व्यूज, रोडीज ऑडिशन का एक्सपीरियंस और बिग बॉस कंटेस्टेंट्स पर उनकी ओपिनियंस, और हाँ, एक इंटरेस्टिंग टैलेंट और है इनका, यश रैप भी करते हैं। तो आज इन सभी चीजों पर बात होगी, कुछ सीरियस सवाल होंगे, कुछ थोड़ी मस्ती भी होगी। सो वेलकम यश।
1: थैंक यू सो मच पलक फॉर इनवाइटिंग मी।
0: तो यश, आपने ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट करी, लाइक एचआर में क्यों कंटिन्यू नहीं करा?
1: यार मैं आपको बताता हूँ कि हर किसी की ना जर्नी का एक रूल होता है। जैसे लोग सोचते हैं कि हमें ये बनना है, वो बनना है, ये करना है लाइफ में। मेरा ना एक मोटिव ये था, या फिर मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था मुझे क्या करना है, बस मुझे ये पता था क्या नहीं करना। मुझे जॉब नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि 50 साल की उम्र में हाथ में टिफिन लेके ऑफिस जा रहा हूँ, रात को 9 बजे 10 बजे घर आ रहा हूँ, बच्चे यहाँ पापा आएंगे, चलो मूवी देखें या खाना खाएं। मुझे ये पता था कि ये लाइफ मुझे नहीं जीनी, टिपिकल अंकल वाली लाइफ। अंकल नहीं बनना, मुझे लग रहा है कि जब मैं 50-60 साल का भी होऊंगा तो मुझे कूल अंकल बनना। तो मुझे पता था कि जॉब नहीं करनी है तो क्या करना है। तो मेरे अंदर स्किल्स थी, मैं लिखता था, पोएट था, मैंने आपको बताया भी, म्यूज़िक करता था, बट वो मैंने 7-8 साल पहले शुरू किया था, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन ना मैं जॉब में कुछ चल रहे थे इश्यूज, सुननी बस की नहीं हमारे, तो मेरी अपने MD से लड़ाई हो रखी थी और मैं USHR हेड था भाई दफे। तो मेरी कभी मेरे कलीग से लड़ाई नहीं हुई, हमेशा तो MD से, मैनेजर से या फिर डायरेक्टर से, इन सब से होती थी, क्योंकि उनसे मेरी ईगो क्लैश होते थे कि वो ये करो, मुझे नहीं करना ये चीज़ें। तो मैं बैठा हुआ था और मुझे था कि यार रिज़ाइन कर दूँ, क्या करूँ। रील्स देख रहा था और मैंने देखा कंटेंट आ रहा है, मैंने कहा यार ये मैं भी तो कर सकता हूँ, क्या चल रहा है ये, करते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है करते हैं। मेरा जो पहला व्लॉग है यूट्यूब पर अभी भी देखोगे तो वो सेम यही है, लेटा हुआ उठा रहा हूँ कि हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, और मैंने जब बनाया भी नहीं था, नाम भी नहीं सोचा था तब तक। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और मुझे 10-15 दिन भी नहीं हुए थे शुरू करे हुए, मुझे लगा कि मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ, घिस रहा हूँ, पोएट्री कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, नहीं हो पा रही चीज़ें जॉब के साथ, एक काम करते हैं जॉब छोड़ते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लाइफ में ये बोलूँ कि यार यश तू कर सकता था, काश तूने अपने आप को मौका दिया होता, मुझे ये नहीं करना था। तो मुझे मौका देना था, तो मैंने सोचा अपने आप को 2-3 साल देखते हैं, नहीं होगा तो फिर ठीक है। जो लोगों का लाइक करंट लाइफ है ना, लोगों की जर्नी है, मेरे लिए वो वर्स्ट ऑप्शन है। वर्स्ट क्या होगा मेरे लिए कि मुझे जॉब करनी पड़ जाएगी, मेरे लाइफ का वो नाइटमेयर है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बात नहीं है, जो लोग जी रहे हैं लाइफ, मेरे लिए वो वर्स्ट ऑप्शन है कि क्या नहीं हुआ तो क्या करूँगा, जॉब कर लूँगा, ये चीज़ है। क्योंकि तब भी जब मैं जॉब कर रहा था, बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लाइफ का, क्योंकि मेरी सैलरी 1 लाख पर मंथ थी उस वक्त, और वो छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट मैंने छोड़ा, कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और 1 साल काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था, बड़ा सबसे चल रहा है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं यश शर्मा।
1: अच्छा यश, आपने अपनी इंस्टा बायो में लिखा हुआ है कि मैं तो सच बोलता हूँ लेकिन बुरा अपने आप लग जाता है, तो ये कौन सा सच है जो लोगों को बुरा लग रहा है?
2: मैं तो सच बोलता हूँ बुरी अपने आप लगती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहा था, कॉमेडी स्किट्स बनाता था, ठीक है, और वो बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत हसल नज़र आ रहा था मुझे। मैं बहुत परेशान था कि मेरी क्या नीश होगी, मतलब मैं भगवान पूछ रहा, भगवान मेरी क्या नीश होगी, मुझे क्या बनाना है, नहीं समझ आ रहा था। फिर आया बिग बॉस लास्ट ईयर, और बिग बॉस का हूँ मैं कीड़ा, बचपन से देख रहा हूँ। तो जैसे हम लोग ना बिग बॉस देखते हो सोचते हो कि अरे क्या कह रहा है, मैं होती तो ये कर देती। तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने उस पर रोस्ट करना शुरू किया बिग बॉस पे, मतलब रोस्ट इन द सेंस अपने POVs देने शुरू किए। और मैं जब बना रहा था तो किसी को कंटेस्टेंट पसंद आता है, किसी को नहीं आता, तो मैंने रोस्ट किया। स्टार्टिंग में मृदुल को रोस्ट कर रहा था कि भाई तेरे को हमने इतना वोट देकर वहाँ पर पहुँचाया है, स्टार्टिंग में उसकी वोटिंग हुई ना शहबाज के साथ, तो वहाँ क्या कर रहा है, चुप बैठा है, शांत बैठा है, वो नताले के साथ घूम रहा है, जाके वहाँ पर खेल। तो लोगों ने बहुत गालियाँ देनी शुरू करी मुझे कि ये वो वगैरह वगैरह, तू तो PR कर रहा है, गालियाँ, तो फेम खाना चाहता है, हेल्प लेना चाहता है। मैं बोल रहा यार मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। हमें मृदुल से ये थी चीज़ें कि वो जाकर वहाँ पे कुछ करेगा, वो नहीं कर पा रहा, शांत बैठा है, तो मैं सच बोल रहा हूँ, लोग बुरी क्यों लग रही है। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, कमेंट्स को रिप्लाई कर देता था, ये वो, मैं सच ही बोलता हूँ, जो फैक्ट्स होते हैं बस वो बोलता हूँ। इसलिए मैंने अपना टैगलाइन बनाया और मैं हर वीडियो के एंड में बोलता भी हूँ कि मैं तो सच बोलता हूँ बुरी अपने आप लगती है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: कुछ हटके।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो।

0: गाना बजा दूं।
1: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ। यश, जब पहली बार किसी वीडियो पे मिलियन में व्यूज गए थे तो वो फीलिंग क्या थी?
2: मैं आपको बताता हूँ कि मिलियन से पहले मेरा जो किस्सा है वो है 100K का।
1: ओके।
2: तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था जब, तो 1000 व्यूज, 700, 800, 1200 मैक्सिमम इतने आते थे, ठीक है। तो जैसे लोगों को ना चुल की 10K पे स्टोरी लगाएंगे हम, तो स्टार्टिंग में है ना, यहाँ से 2 साल पहले की बात, 2.5 साल की। तो मैंने ना एक सीरीज शुरू की थी खुद से, मैं घर पे कंटेंट बनाता था मम्मी और बहन के साथ। घर का छोटा बेटा, घर का एक लौता बेटा जो करते हैं ना, उनका घर का छोटा बेटा क्या होता है, उसको करना धरना कुछ नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो मैं फ्रंट कैम लेके मेरी मम्मी सामने बैठी थी और मैं कि कुछ भी मतलब रेंट करता था कि मैं ये मुझे गाड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। तो ठीक है, बना रहा था तो वीडियो चली, 2000-5000 व्यूज आए। तो मेरे लिए 5000 बड़ी बात है यार, मैंने कहा 10K हो जाएंगे शायद इस पर, 10K के साथ स्टोरी लगाऊंगा। तो मेरे से स्किप हो गया 10K। जब हुए थोड़े एक दो घंटा, मैंने देखा तो वो 50,000 थी। मैंने ये क्या हुआ, मैंने 50,000, मैंने 10K पे तो स्टोरी लगानी थी। मैंने कहा अब देखते हैं कहाँ जाती है, अब सीधा 1,00,000 पे स्टोरी लगेगी। तो मेरी बहन भी जाग रात को, हम सो नहीं रहे हैं कि 100K मेरे लिए था कि क्या हो रहा है बवाल ये। तो मेरी बहन भी जाग रही रात को, 1:30 बजे की बात है, और उसका मैसेज आया, भैया 99K हो गए हैं व्यूज आपकी वीडियो बना, मैं भी देख रहा हूँ 100K हुए। तो मैं ऊपर से नीचे आया, मेरा रूम ऊपर है रूफटॉप पे, तो मैं नीचे आया, वो आयो करे 100K हो गए। 100K ये क्या हो गया, मतलब मेरे लिए 100K बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जब नहीं, मतलब लोग कहते हैं 10K पे स्टोरी लगाएंगे, 40,000 पे लगाएं, 50,000 पे, मेरी जो फर्स्ट अचीवमेंट की स्टोरी थी वो थी 100K की। कभी मैंने 10,000 की लगाई ही नहीं है, मतलब ये कहते हैं ना कि आपने कुछ सोचा लेकिन भगवान ने उससे बड़ा सोचा हुआ है। तो मैंने 10,000 सोचा था, भगवान ने मुझे सीधे 1,00,000 व्यूज दिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद तो 1,00,000-2,00,000 व्यूज आते रहते थे। वो मैंने सीरीज चलाई थी पूरी, 25-30 वीडियो बनाई थी मैंने, घर का इकलौता बेटा, छोटा बेटा। तो वो इतना इंगेजमेंट आने लगा, इतना आने लगा कि जब मेरा फर्स्ट मिलियन आया तो मुझे था कि मिलियन ठीक है, ओके नेक्स्ट, ऐसे। तो ये सीन था, तो मैं मिलियन पे इतना खुश नहीं हुआ था, मिलियन मेरे लिए था कि ओके और आगे करते हैं। बट मिलियन तक मेरी जर्नी ऐसी हो चुकी थी कि वो नॉर्मल था मिलियन मेरे लिए, लेकिन 100K मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि 1,00,000 व्यूज वीडियो पर।
1: जी जी जी, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है यश शर्मा। ओके यश, आप बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के पीछे इतना क्यों पड़े हो, मतलब क्या रीजन क्या है?
1: यार बिग बॉस शायद लोगों के लिए ना शो होगा, मेरे लिए मेरी ही जर्नी है। मतलब मैं बिग बॉस को ना जीता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं बिग बॉस के अंदर ही हूँ। और ऑब्वियसली मेरा सपना बिग बॉस जाना है, आई मैनिफेस्ट कि मैं बिग बॉस जाऊँगा एक दिन। तो जब मैं कंटेंट बनाता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं रील बना रहा हूँ किसी के लिए या फिर उसको रोस्ट कर रहा हूँ। मैं फील करता हूँ कि मैं शो के अंदर हूँ, मैं घर के अंदर हूँ। तो अगर मैं जो सामने वाला बंदा जो भी कंटेस्टेंट है, अगर वो मेरे सामने हरकत करता तो मैं उससे कैसे बात करता? मैं उसको वही रिप्लाई देता जो मैं अपनी वीडियो की स्क्रीन पर, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दे रहा हूँ। मैं अपने आपको इमेजिन करता हूँ शो के अंदर और मैं वही बातें करता हूँ जो जब मैं शो में जाऊँगा, जिस एटीट्यूड से, जिस तरीके से बात करूँगा, सेम वही है। तो यही है मेरा, मैं बिग बॉस के पीछे नहीं पड़ा हुआ। मैं बिग बॉस के घर को अपना ही घर मानता हूँ, अपनी जर्नी मानता हूँ। मतलब लोग एक सीज़न करते हैं, मैं जिस सीज़न से देख रहा हूँ मैंने वो सारे सीजन्स किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अब 2 साल से तो मैं बिग बॉस पे कॉन्टेंट बना रहा हूँ, तो आई फील कि मैं बिग बॉस 20 में भी हूँ। और कोशिश मेरी बहुत ज़्यादा थी कि अब मुझे लोग DM करते हैं, आप क्यों नहीं आ रहे बिग बॉस में, नहीं बुलाया या फिर क्या चीज़ है। तो मैंने इस बार बोला भी है लोगों से कि बिग बॉस 20 में मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन इस बार बिग बॉस 20 से मेरा नाम 100% जुड़ने वाला है।
0: क्या बात है। और अगर मैं पूछूं कि इस सीज़न में जितने भी मेंबर्स आए हैं उसमें आपका फेवरेट कौन है और वो क्यों है?
1: यार अगर फेवरेट या फिर आप बोलो कि उसको सपोर्ट करना चाहते हो, तो मैं गुल्लू को तो सपोर्ट करना चाहता हूँ ऑब्वियसली। बट अभी गुल्लू ना बफर मोड पे है, शायद वो एक हफ्ते बाद रिज्यूम करेगा अपने आप को। बट अगर ऑब्वियसली गुल्लू मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाला है। बट अगर आप अभी करंटली पूछ रहे हो क्या किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो काजी भाई हमारे लॉर्ड काजी हैं। अगर आपको पता हो तो फेम गुरुकुल, अगर आपको पता हो तो फेम गुरुकुल में उन्होंने अरिजीत सिंह को हरा कर वो शो जीते थे आज से 20 साल पहले, जब वोटिंग के पैसे लगते थे। अब तो हम फ्री करते हैं ना, तब उन्होंने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था वोटिंग के लिए। तो अभी वो सिंगिंग के लिए उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन वो घर आके जो क्रेजी ब्रेन रॉट कंटेंट दे रहे हैं ना बिग बॉस में, मतलब वो मुझे इतना तगड़ा लगता है। वो बंदे ने क्या करा कि अंदर ना शोर मचा दे केओस कि मैं बीमार हूँ, मुझे मेडिकल रूम में बुलाओ, पूरे घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया वो बंदा। जब बुलाया से मेडिकल रूम में, एपिसोड में क्लिप डाली है, तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं मैं तो एक्टिंग कर रहा था।
0: क्या बात,
1: शो को कंटेंट दे रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनका भाई साहब वो हर चीज़ में ना एक लास्ट में तकिया कलाम जोड़ता है, जैसे मैं अपना जोड़ता हूँ, तो वो बोलता है आई एम अ रॉक स्टार बेबी, तो बहुत सही लगता है मुझे, बहुत ऐसी आती है। तो करंट फेवरेट काजी है, बट आई विल सपोर्ट गुल्लू फॉर श्योर।
0: ओके नाइस, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: कर गई चुल।
1: ब्रेक के बाद वेलकम बैक, मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है खास मुलाकात। सो यश, अब आपके एक और टैलेंट की बात करते हैं और वो है रैप। सो व्हाई डोंट यू गिव अस अ लिटिल रैप राइट हियर।
2: ओके, काफी टाइम हो गया, बट ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, रैप तो बनता ही है
1: जी।
2: इत्मीनान से हूँ बैठा घर पे, पर मैं शांत नहीं हूँ, पीठ पे है खाए खंजर पर मैं नाराज नहीं। जिन्होंने नहीं दिया साथ उनके साथ भी हूँ, कड़वे शब्द बोलता हूँ मैं, सच की आवाज भी हूँ। मेरे दुश्मन खुश हैं, सोचे मैं हारा हूँ, गानों पे नहीं आते हैं व्यूज, कितना बेचारा हूँ, पर ये नहीं जानते कि मेहनत करता जा रहा हूँ। फैलेगी मेरी रोशनी, मैं चमकता सितारा हूँ, मैं आऊँगा और सबको खाऊंगा, ये जितना पीछे खींचेंगे मुझे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, दूर रहना मुझसे, मैं रेड जोन हूँ। या मैं हूँ लिखारी और लिखना ही मेरा काम है, लिखो कड़वी बातें मुझे सुनती है अवाम, जुमो प्यार के नशे में मेरा नशा मेरी जान, बड़बड़ाते रहते हो घर वाले परेशान है, हैरान है जमाना के मैं कैसे बढ़ता जा रहा हूँ, गुमनाम ये जमाना के मैं आगे बढ़ता जा रहा, मुझे नहीं पता एक दिन में कितने गाने बना रहा, सीने में है आग बस उसको भड़का रहा हूँ। जॉनर की बात है तो हिप हॉप मेरी जान, मेरा हसल जिंदाबाद उसी से करना है नाम, मेरे आने से जाने कितने हो गए गुमनाम, बाकी हेटर्स को सलाम, तुमने छेड़ा ये तूफान। या शाउट आउट मेरे सपने मेरी माँ को, दोनों से मिलता हौसला दोनों से प्यार, यो खुदा करे रहमत संभालो परिवार को, इसी में मेरी जीत इसी में मेरी हार ब्रो।
1: ओके, ये तो अनएक्सपेक्टेड था भाई। तो आज हमने यश के कंटेंट क्रिएटर वाले साइड को भी जाना, उनकी जर्नी के बारे में सुना और रैपर यश को भी ऑफिशियली सुन लिया। तो आज की खास मुलाकात में यश शर्मा के साथ हुई एकदम कैंडिड कॉन्वर्सेशन, उनके कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी से लेकर मिलियन व्यूज तक, रोडीज ऑडिशन से लेकर रैप तक। यश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये खास मुलाकात पसंद आई हो तो जुड़े रहिए रेडियो महारानी के साथ। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ अजय पलक और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर, जहाँ OTT सॉन्ग्स, ट्रेलर्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया की इंटरेस्टिंग बातें होंगी। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।

वो सामने होगी। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

रेडियो महारानी कुछ हटके। रेडियो

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कभी कभी ना मूवी का फर्स्ट हाफ देख के लगता है ना कि भाई ये तो नहीं चल पाएगी, इसमें मजा नहीं आया, और सेकंड हाफ देखते ही पूरा गेम पलट जाता है। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा हैवान के साथ, जिसमें फर्स्ट हाफ ऑनेस्टली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है और उस पॉइंट पर लगता है ना कि फिल्म शायद काम नहीं करेगी, लेकिन वहीं सेकंड हाफ में स्टोरी का पेस और एंटरटेनमेंट दोनों बेटर हो जाते हैं और फिल्म एंजॉयबल लगने लगती है। अक्षय कुमार विलेन के रोल में काफी इम्प्रेसिव लगे हैं और दूसरी तरफ सैफ अली ने भी ब्लाइंड मैन के करेक्टर में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। हाँ, फिल्म थोड़ी शॉर्टर होती तो एक्सपीरियंस और बेटर हो सकता था, लेकिन अगर ओवरऑल मूवी की बात की जाए तो हैवान एक गुड वन टाइम वॉच है, और अगर आप एक्शन और एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं तो थिएटर में जा सकते हैं और इस मूवी को देख सकते हैं। और अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है तो अपना रिव्यू मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। नंबर है 9654896896। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नंबर है 9654896896। इसी के साथ वक्त हो गया है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्म फ्लेवर, मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें.

0: कुछ कुछ कुछ हटके।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला।

0: गाना बजा दूं।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: अच्छा, किसी फिल्म के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? पैसा, रिव्यूज या फिर ऑडियंस का प्यार? और इस सवाल पर शहनाज गिल का नजरिया काफी इंटरेस्टिंग है। हाल ही में पंजाबी फिल्म सिंह वर्सेस स्कॉट 2 में नजर आई शहनाज का मानना है कि अगर दर्शक आपके लिए अपना पैसा खर्च करके थिएटर जा रहे हैं ना, तो उनके रिएक्शंस और उनके ओपिनियंस को ना रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि हर फिल्म इसलिए बनाई जाती है कि लोगों को पसंद आए, लेकिन अगर कोई फिल्म नहीं चलती किसी कारणवश तो उसको लेकर स्ट्रेस लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। और मुझे ना शहनाज की एक बात काफी अच्छी लगी कि हमें ना हर दिन खुद को साबित करना होता है, चाहे सिनेमा हो, जिंदगी हो या फिर घर वालों के आगे ही। और उनका फोकस भी अब ऐसे रोल्स पर है जो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई ना दे बल्कि कहानी को आगे बढ़ाए और ऑडियंस को ना वो कहानी हमेशा याद रहे। मतलब इन शॉर्ट की रोल छोटा हो या ना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक गाने का। मैं हूँ आरजी पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: फ्लेवर।
1: अच्छा संडे को अगर आपका प्लान सिर्फ लेट उठना, खाना और फिर बेड पर जाके सो जाने का है ना, तो इस बार प्लान थोड़ा चेंज कर लेना, क्योंकि 27 सितंबर को ना फरीदाबाद में होने जा रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन। और ये सिर्फ एक रेस नहीं है बल्कि फिटनेस और नशा मुक्त हरियाणा का एक बड़ा मैसेज भी है। और इसका वेन्यू है सूरज कुंड मेला ग्राउंड्स। और इस मैराथन में ना आपके पास काफी ऑप्शंस है। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर का टाइम्ड रन है और 5 किलोमीटर की फन रन भी है भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सुनो जरा, विनर्स के लिए लगभग 10 लाख रुपए की प्राइज मनी भी रखी गई है। मतलब इस बार संडे को ना कैलोरीज काउंट नहीं बल्कि कैलोरीज बर्न करने का सीन है। तो अपने रनिंग शूज रेडी रखिए और फरीदाबाद के इस फिटनेस फेस्टिवल का हिस्सा बनिए। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

0: 99.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड

पार्टी सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना कि वो जैसे ही डीजे पे बजते हैं लोग अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, और 90s का एक ऐसा ही पार्टी एंथम है कोई जाए तो ले आए, फिल्म घातक का, जिसमें ममता कुलकर्णी अपने शानदार डांस मूव से खूब चर्चा में आई थी। और 1996 में आया ये गाना आज भी शादी और पार्टीज में बजता है तो माहौल अपने आप ही बन जाता है। और इस गाने को अपनी आवाज दी थी अलका याग्निक ने, और इसके लिरिक्स लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। यानी म्यूजिक, लिरिक्स और ममता के डांस मूव्स, मतलब पूरा 90s का पैकेज भाई। और यही तो खासियत है ना उस दौर के गानों की कि 3 दशक निकल गए लेकिन बीट अभी भी वही है। और गाने की बात मैंने कर ही दी है तो सुनाती हूँ आपको एक गाना, आप गाने को एंजॉय कीजिए, लौटूंगी मैं फिर यहीं। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: क्राइम ड्रामा देखते वक्त अगर आपको रॉ, ग्रिटी और थोड़ा देसी हार्टलैंड वाला फ्लेवर पसंद है ना, तो आप घमासान मूवी देख सकते हैं। जी हाँ, 11 सितंबर को Z5 पर रिलीज हुई ये फिल्म तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट की है, जहाँ प्रतीक गांधी एक ऑनेस्ट IPS ऑफिसर के रोल में है और दूसरी तरफ अरशद वारसी बने एक खौफनाक डकैत महाराज। और परफॉर्मेंस की बात करें तो अरशद वारसी का कैरेक्टर काफी इम्पैक्टफुल है, वहीं प्रतीक गांधी भी अपने कॉप वाले रोल में सॉलिड लगे हैं। और इसी के साथ राजपाल यादव और जतिन गोस्वामी भी अपनी प्रेजेंस छोड़ते नजर आए हैं इस मूवी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मूवी की कहानी और सीन्स ना काफी फैमिलियर लगते हैं और इसकी पेसिंग जगह जगह स्लो है और एक्शन भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। मतलब फिल्म में टेंशन है, कुछ ग्रिपिंग पोर्शंस भी हैं, लेकिन पान सिंह तोमर जैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई ये मूवी। और अगर ओवरऑल मैं मूवी की बात करूं तो घमासान एक डिसेंट वन टाइम वॉच है, स्पेशली अगर आपको डकैत और क्राइम ड्रामास पसंद है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप ये मूवी जरूर देख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड। डॉक्टर कॉलिंग।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: देवी काली का नाम आते ही ना दिमाग में शक्ति, क्रोध और बुराई की विनाश की तस्वीर बन जाती है। लेकिन अब यही कहानी बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में देखने को मिलेगी। जी हाँ, आ रही है महाकाली, जो प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि PVCU का हिस्सा है। और फिल्म में भूमि शेट्टी देवी काली यानी कि महाकाली के किरदार में नजर आएंगी। वहीं अक्षय खन्ना बने हैं असुर गुरु यानी कि शुक्राचार्य। कहानी में देवताओं, असुरों और इंसानों के बीच संघर्ष दिखाया जाएगा और शुक्राचार्य के अंदाज पर रक्त बीज मानवता के लिए खतरा बनता है। और इसी के बीच जन्म होता है महाकाली का, मतलब माइथोलॉजी बड़े स्केल एक्शन और विजुअल इफेक्ट, यानी कि इस बार कहानी सिर्फ सुनी नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर महसूस की जाएगी। और इस फिल्म के लिए डेट नोट कर लीजिए, 8 जनवरी 2027 को आप इस मूवी को थिएटर्स में देख सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ वक्त हो गया है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: फाइनली OTT पर कुछ ऐसा मिला जो देखते हुए आपको बार बार अब क्या होगा बोलने का मन करे। अली बाबा और 40 भूत हॉरर, कॉमेडी और मिस्ट्री तीनों का इंटरेस्टिंग मिक्स लेकर आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अशोक खुद को ही बहुत सीरियस नहीं लेता, इसलिए हॉरर के साथ ना कॉमेडी का बैलेंस भी बना रहता है। और आशा नेगी को स्क्रीन पर वापस देखना भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। विशाल वशिष्ठ अपनी फन एनर्जी के साथ शो को और एंटरटेनिंग बनाते हैं और दोनों की कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज और पेयरिंग एपिसोड को ना और इंटरेस्टिंग बना देती है। और मैंने स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड देखे और ऑनेस्टली मिस्ट्री ने क्यूरियोसिटी तो बना ही दी है, और अब बस नेक्स्ट एपिसोड का वेट है, क्योंकि असली सवाल तो ये है कि ये 40 भूतों का राज आखिर खुलेगा कैसे। और अगर ओवरऑल में शो की बात करूँ तो शो फन है, इंगेजिंग है, तो अगर आपको हॉरर के साथ साथ थोड़ी कॉमेडी और मिस्ट्री भी चाहिए ना, तो अली बाबा और 40 भूत को ट्राई कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी 11th ऑफ सितंबर को जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर हो चुका है। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर और मैं हूँ RJ पलक आप सभी के साथ।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर
1: देखन में छोटन लागे और घाव करे गंभीर, ये लाइन इस वक्त हनुमान अंश पर एकदम परफेक्ट बैठती है। एक स्मॉल बजट फिल्म और रिजल्ट देखिए, ऑडियंस के प्यार ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का फिगर क्रॉस करवा दिया और अब इस फिल्म की सक्सेस के बीच मेकर्स ने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, हनुमान हंस के राइटर डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी अब लेकर आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म राम बोला, और इस बार स्टोरी होगी महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की लाइफ पर। उनकी भक्ति, उनका साहित्य और उनकी पूरी लाइफ जर्नी को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और फिल्म को राइट और डायरेक्ट करेंगे विशाल चतुर्वेदी। और इस फिल्म की प्रोडक्शन में महावीर जैन, अमित उपाध्याय और रघुवेंद्र सिंह भी होंगे। मतलब हनुमान अंश के बाद अब राम बोला के थ्रू एक और इंस्पायरिंग स्पिरिचुअल स्टोरी ऑडियंस तक पहुंचने वाली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हनुमान अंश वाला मैजिक राम बोला में भी देखने को मिलता है या नहीं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: क्लीन रहो।
1: हाँ, सोचो जरा उस नदी के बारे में जहाँ कल फिर कोई पानी भरेगा। जिस पानी से जीवन चलता है उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो। उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: दिवाली में अगर आपको लग रहा था कि रामायणा ही बिग स्क्रीन पर लाइमलाइट ले जाएगी तो जरा रुक जाइए, क्योंकि नयनतारा भी लेकर आ रही है अपनी माइथोलॉजिकल फिल्म मुखूति अम्मन 2 और मेकर्स ने फाइनली इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। फिल्म का नया टीजर रिलीज हुआ है जिसके साथ कंफर्म हुआ है कि मुखूति अम्मन 2 6 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी और ये मूवी तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम 5 languages में देखने को मिलेगी। और टीजर की अगर बात करें तो एक मिस्टीरियस वर्ल्ड देखने को मिलता है जहां एक घुड़सवार अपनी रानी को वॉर्न करता है कि दुश्मन सोल्जर्स को पता चल चुका है कि बच्चा कहां है और बस यहीं से स्टोरी का सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब माइथोलॉजी, मिस्ट्री और डिवाइन एलिमेंट्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 नवंबर को ही रामायणा भी ऑडियंस के सामने आएगी, तो दिवाली सीजन में बॉक्स ऑफिस पर ये टक्कर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब देखना यह है कि ऑडियंस जाती किस तरफ है, रामायणा या फिर मुखूति अम्मन 2 की तरफ। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का, एंजॉय कीजिए ये गाना और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें अपना, जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

शादी में प्यार कम हो जाए तो रिश्ता टूट सकता है, लेकिन जब उसी शादी में मर्डर हो जाए तो पूरी कहानी ही पलट जाती है ना। जी हाँ, 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है लव लॉटरी, जो कोर्टरूम ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस से थ्रिलर का मिक्स है। स्टोरी है एक मैरिड कपल के अराउंड, जिनकी रिलेशनशिप मिसट्रस्ट और बिट्रेयल की वजह से खराब हो जाती है, और फिर वाइफ का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद हस्बैंड कार्तिक ही मेन सस्पेक्ट बन जाते हैं। अब कहानी सिर्फ मर्डर सॉल्व करने की नहीं, बल्कि ये प्रूव करने की है कि कार्तिक सच में किलर है या फिर किसी ने उन्हें फंसा दिया है। और इस फिल्म में अक्षय ओबेरॉय, हेमंत पांडे जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। तो अगर आपको कोर्टरूम के आर्गुमेंट्स, मर्डर मिस्ट्री और असली कल्प्रिट कौन है वाली स्टोरीज पसंद है ना, तो आपके लिए ये मूवी इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए, अब वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: तो भाई मूवीज, ओटीटी, सॉन्ग्स, ट्रेलर्स और थोड़ी सी फिल्मी गॉसिप के साथ अब वक्त हो चुका है फिल्मी फ्लेवर को शटर डाउन करने का। और आज भी काफी कुछ था आपके साथ शेयर करने को, लेकिन एंटरटेनमेंट का ना ये डोज यहीं खत्म नहीं होता। कल फिर मिलूंगी आपसे, तब तक एंजॉय कीजिए ये गाना और हंसते रहिए, खुश रहिए और अपनी प्लेलिस्ट को ना फिल्मी बनाए रखिए। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर। बाय बाय, टेक केयर।

शहर के सबसे बड़े अस्पताल की सातवीं मंजिल पर एक ऐसा कमरा था जहां दो अजनबी पहली बार मिले थे। कमरा नंबर 307। एक तरफ था एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना पैसा था कि वो अपने आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी खरीद सकता था। दूसरी तरफ था एक साधारण सा आदमी जिसके पास दौलत के नाम पर बस एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा घर और कुछ अधूरे सपने थे। दोनों की जिंदगी बहुत अलग थी, लेकिन उस दिन किस्मत ने दोनों को एक ही कमरे में ला खड़ा किया। और सबसे अजीब बात, दोनों के पास अब वो चीज लगभग बराबर बची थी जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अपने पैसों से खरीद नहीं सकता। डॉक्टरों ने दोनों को उनकी बीमारी के बारे में बता दिया था। आगे कितने दिन बचे हैं कोई नहीं जानता था, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या शायद उससे भी कम। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब कमरा नंबर 307 में होने वाली एक छोटी सी मुलाकात उनकी जिंदगी का पूरा हिसाब बदल देगी। एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी थी और दूसरा जिसने पूरी जिंदगी अपनों के लिए जीते जीते अपने सपने टाल दिए थे। दोनों के पास पछतावे थे, दोनों के पास डर था और दोनों के पास सिर्फ एक सवाल बचा था, शायद आखिरी सवाल। अगर जिंदगी ने आपको सिर्फ थोड़ा सा समय और दिया हो तो आप उस समय के साथ क्या करोगे? क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं देती, वो बस एक इंसान हमारे सामने भेज देती है जो हमें ये याद दिला सके कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई और जिंदगी अभी बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम सपना है और आ गई हूँ आपको अपनी कहानियों की दुनिया में ले जाने। तो चलिए चलते हैं कमरा नंबर 307 में और जानते हैं इन दो लोगों की कहानी।

रूम नंबर 307। इस कमरे में दो बेड थे, बीच में एक छोटी सी टेबल थी जिस पर दो वाटर बॉटल्स, कुछ मेडिसिंस और एक घंटी रखी थी। खिड़की के बाहर हॉस्पिटल की पार्किंग दिखाई देती थी। सुबह से शाम तक गाड़ियों का आना जाना लगा रहता और रात होते ही वही पार्किंग पीली रोशनी में थोड़ी उदास दिखाई देती थी। कमरे के दोनों तरफ बेड थे, लेकिन दाहिने तरफ का बेड राघव ने लिया। 60 साल का राघव शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में गिना जाता था। उसका कारोबार कई शहरों में फैला हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, गरीबी, संघर्ष, असफलता, पैसा, सफलता और उसके बाद वो अकेलापन, जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। कुछ महीनों से उसका कैंसर का इलाज चल रहा था और इस बार कीमोथेरेपी के बाद कमजोरी ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स ने उसे कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखने की सलाह दी। दूसरे बेड पर उसी दिन एक और मरीज आया था, नाम था मधुसूदन, जिसकी उम्र 65 साल थी। 40 साल तक अलग अलग बड़े होटेल्स में शेफ की नौकरी कर चुका था। अब कुछ साल पहले रिटायर हुआ और अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नी कमला, दो बेटे और एक बेटी, तीनों बच्चे अपने अपने परिवार और काम में अच्छी तरह से सेटल थे। मधुसूदन की लाइफ बिल्कुल सिंपल थी, ना ही कोई बड़ी डेजिग्नेशन, ना ज्यादा प्रॉपर्टी, ना कोई ऐसी कहानी जिसे लोग बैठ कर सुने। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उसने दूसरों के लिए खर्च कर दिया था। बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस, बेटी की शादी, बड़े बेटे की नौकरी लगने तक मदद, छोटे बेटे को कारोबार शुरू कराने के लिए जमा पैसे निकाल देना, कमला की जरूरतें, घर की मरम्मत, माँ बाप की बीमारी, और इसी बीच उसकी अपनी जिंदगी कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। राघव और मधुसूदन की पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि राघव इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो किसी के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहता था, वो भी ऐसे वक्त में। लेकिन मजबूरी ये थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल था और रूम्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। इतना पैसा होने के बावजूद भी राघव को मधुसूदन के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा था। इस बात को लेकर राघव बहुत ज्यादा नाराज था। तो क्या राघव की ये नाराजगी दूर हुई या फिर मधुसूदन का कमरा बदला? बताऊंगी आपको।

0: राघव एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और मधुसूदन एक बहुत बढ़िया शेफ। लेकिन दोनों की मुलाकात एक ऐसी जगह हुई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उम्र के इस दौर में दो ऐसे लोग हॉस्पिटल के डबल शेयरिंग रूम में मिले, ना कोई हाथ मिलाना ना कोई खास बातचीत। मधुसूदन कमरे में आया और अपना सामान रखा, तभी उसने नर्स से पूछा, सिस्टर ये खिड़की खुल सकती है क्या? नर्स ने कहा, सर एसी इज ऑन, खिड़की नहीं खुलेगी। अच्छा, वो चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अपना छोटा रेडियो निकाला और धीमी आवाज में लगा दिया। पुराना फिल्मी गाना बजने लगा। राघव ने आंखें खोली। एक्सक्यूज मी, मधुसूदन ने तुरंत अपना रेडियो बंद कर दिया। जी, थोड़ा शोर हो रहा है, माफ कीजिए सर, बस पहले दिन इतनी सी ही बात हुई। रात में राघव सो नहीं पा रहा था। उसने देखा मधुसूदन भी जाग रहा था। आप सोए नहीं अभी तक?
1: नहीं सर।
0: दर्द है?
1: नहीं, दर्द नहीं है, बस नींद नहीं आ रही।
0: राघव करवट बदलते हुए बोला, आप अपना रेडियो चला सकते हैं। मधुसूदन ने तुरंत उसकी ओर देखा। पक्का? हाँ।
1: फिर आप परेशान तो नहीं होंगे?
0: अब नहीं हो रहा। आवाज इतनी धीमी थी कि गाना सुनाई कम और महसूस ज्यादा हो रहा था। उस रात दोनों पहली बार एक ही कमरे में चुपचाप जागते रहे। अगले दिन सुबह नाश्ता आया। मधुसूदन ने ट्रे खोली और देख कर बोला, आज फिर वही उबली हुई सब्जी। राघव ने पूछा, क्यों, आपको पसंद नहीं?
1: सर मैं एक शेफ रहा हूं।
0: तो इतनी खराब सब्जी देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। राघव ने पहली बार ध्यान से उसकी तरफ देखा। आप शेफ थे?

जी कहाँ? मधु ने 2-3 बड़े होटेल्स का नाम बताया। राघव थोड़ा सरप्राइज्ड था। अच्छा करियर रहा होगा? मधु मुस्कुराया। करियर तो अच्छा था, जिंदगी भी ठीक ठाक थी। राघव ने पूछा, फर्क? मधु ने ट्रे की तरफ देखते हुए कहा, करियर में तो अपनी पसंद का काम कर लिया, पर जिंदगी में अपनी पसंद का बहुत कम। राघव उस बात का जवाब नहीं दे पाया। कुछ ही देर में मधु से मिलने उसका परिवार आया। सब बहुत उदास थे, लेकिन मधु के सामने खुश होने की एक्टिंग कर रहे थे। ये बात राघव समझ पा रहा था, पर हर बार जब वो दरवाजे की ओर देखता तो उसे अपने मैनेजर के अलावा और कोई वहां नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे करके दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। राघव की आदत थी कि वो हर काम के लिए किसी को बुलाता था। दवाई चाहिए तो नर्स, पानी चाहिए तो अटेंडेंट, रिपोर्ट चाहिए तो असिस्टेंट, फोन चाहिए तो असिस्टेंट। मधु उसे देखता रहा। एक दिन उसने कहा, आप पानी नहीं ले सकते क्या? राघव ने कहा, पानी पास थोड़ी ना है, सिर्फ 2 कदम ही तो दूर है। मैं मरीज हूं। मधु ने हंसकर कहा, हाँ मैं भी हूं। राघव ने उसे देखा, तुम बहुत ज्यादा नहीं बोलते? मधु ने कहा, अभी तो मैंने बोलना शुरू भी नहीं किया। और राघव जोर जोर से हंस पड़ा। धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें दोनों के बीच की दूरी कम करने लगी।

कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे हमारा कोई नाता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने सुख और दुख दोनों के साथ ही नजर आने लगते हैं। एक सुबह मधुसूदन के घर से खाना आया, स्टील के 3 डिब्बे थे, उसकी पत्नी कमला ने भेजा था। मधुसूदन ने पहला डिब्बा खोला तो कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई। राघव ने पूछा, क्या है? दाल। दाल और उसमें इतनी खुशबू? मधुसूदन मुस्कुराया, घर की दाल है जनाब। राघव के मुंह में पानी आता देख मधु अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, खाएंगे? राघव कुछ सोचने के बाद बोला, डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से मना किया है। मधु के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, ये बाहर का नहीं जनाब, घर का खाना है, कमला ने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, पर मेरे घर का खाना तो नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मधुसूदन कुछ सेकंड उसे देखता रहा और फिर सूर सूर से हंसने लगा। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड आदमी है, राघव ने कहा। चलो अब इतना कह रहे हो तो थोड़ी सी दाल दे ही दो। मधुसूदन ने कटोरी में दाल डाल दी। राघव ने 2 चम्मच खाई। अच्छी है, वैसे आपको नहीं आपकी वाइफ कमला जी को शेफ होना चाहिए था। उस दिन ना जाने दाल में ऐसा क्या था कि दोनों दिल खोल कर बात करने लगे। पहली बार राघव ने अपने दिल की बात, अपने परिवार की बात किसी के साथ शेयर की थी। मेरी 3 शादियां हुई। पहली शादी इसलिए टूट गई क्योंकि मेरे पास वक्त था पर पैसे नहीं। दूसरी इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसा था पर बीवी को देने के लिए वक्त नहीं। तीसरी बीवी इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि उसके लिए मैं थोड़ा सा रूड हो चुका था। कई रिलेशनशिप्स रहे मेरे, कुछ लंबे चले तो कुछ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन कोई रिश्ता टिक ही नहीं पाया। राघव ने ये बात किसी शिकायत के अंदाज में नहीं बताई थी, बस बता दी थी। मधु ने भी कोई जजमेंट नहीं दिया, उसने सिर्फ पूछा, आपने कभी सोचा है कि ऐसा हुआ तो क्यों? राघव ने कुछ देर चुप रहकर कहा, शायद मेरी ही गलती थी। मधु ने बहुत डरते हुए कहा, किस बात की? मैंने हमेशा सोचा कि पैसा होने से जिंदगी आसान हो जाती है, इसलिए मैंने बहुत पैसा कमाया, पर जिंदगी कभी आसान बन नहीं पाई। मधु ने धीरे से कहा, पैसे से जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां आसान हो सकती हैं, लेकिन आदमी का स्वभाव नहीं बदलता। पर आपकी जिंदगी आपके अलावा और कोई नहीं बदल सकता। राघव ने थोड़ा सा चिढ़कर मधु से पूछा, क्यों? तुमने 40 साल मेहनत करके पैसा नहीं कमाया? आखिरकार जो कुछ कर रहे थे पैसे के लिए ही तो कर रहे थे। हाँ, पैसा चाहिए था, लेकिन जितना चाहिए था उतना ही कमाया, उसके बाद जिंदगी कमाने लगी। राघव समझ नहीं पाया, क्या मतलब? बच्चे बड़े हो रहे थे, घर चल रहा था, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, फिर लगा कि थोड़ा और कमा ले, फिर थोड़ा और। ये कहते हुए वो कुछ देर रुक गया, फिर एक दिन पता चला कि जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त बीत गया। कमरे में ना खत्म होने वाली एक खामोशी छा गई। दोनों चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सारा दिन बस उस रेडियो पर कुछ गाने बजते रहे, वो गाने जो दोनों को
बहुत पसंद आ रहे थे और शायद उनके दिल को सुकून भी मिल रहा था।

राघव और मधु हॉस्पिटल के रूम नंबर 307 में धीरे धीरे दोस्त बनने लगे थे और अब इसी दोस्ती में वो अपने दिल और अपनी जिंदगी के कुछ पुराने पन्ने खोल रहे थे। एक दिन राघव ने मधुसूदन को अपने पुराने फोटो दिखाए। एक फोटो में वो जवान था, सफेद शेफ कोट पहने हुए, हाथ में बड़ी सी सर्विंग ट्रे। मधुसूदन काफी देर तक उस फोटो को देखता रहा। आप इस फोटो में बहुत अलग लग रहे हैं, 20-25 साल पहले की होगी ये फोटो। क्या आप हमेशा से शेफ ही बनना चाहते थे? यही सपना था आपका? मधु ने फोटो अपनी डायरी में रख दी। अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। फिर खोला क्यों नहीं? मधु ने हंसने की कोशिश की। पैसे नहीं थे ना? अरे तो लोन ले लेते। हाँ सोचा था, तो फिर लिया क्यों नहीं? बच्चों की फीस, बेटी की शादी के लिए पैसे, उसके बाद बड़े बेटे को बाहर भेजना था, फिर मधुसूदन ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव समझ गया, हर बार मधु ने अपने सपने के आगे कोई ना कोई जरूरत खड़ी हुई पाई और हर बार अपने सपने को पीछे कर दिया। उस रात मधु के सोने के बाद राघव ने चुपचाप उसकी डायरी खोली। कुछ पन्ने पलटते ही मधु के सारे सपने राघव के सामने थे। रेस्टोरेंट खोलना है, लद्दाख बाइक राइड पर जाना है, समुद्र किनारे बैठकर सनराइज देखना है, बिना कमला को बताए कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो जाना है, काशी में सुबह की कुल्हड़ वाली चाय पीनी है, कुछ दिनों के लिए पूरे परिवार के साथ एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करना है। इतने सारे सपने, वो भी अधूरे। ये पढ़कर राघव कुछ सोचने लगा। फिर अचानक उसने डायरी बंद की और उसी जगह पर रख दी और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। वो रात राघव के लिए एक मिली जुली सी रात थी। नींद आ भी रही थी लेकिन वो खुली आंखों से कुछ सपने देख रहा था, सपने जिंदगी जीने के। एक बार उसे लगा कि मधु तो उससे कहीं ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास सपने तो थे। राघव अपने आप को काफी गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं था। ऐसी अमीरी भी किस काम की, राघव ने खुद से पूछा। मैं तो सपने देखना ही भूल गया। पैसा कमाने की दौड़ में ना मैं परिवार बसा पाया और ना ही खुद को खुश रख पाया, बस एक दौड़ में भागता गया। ये सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब नर्स ने उठाया तब कहीं जाकर राघव की नींद खुली। मधु ने चुटकी लेते हुए कहा, बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद में सोए थे आप। क्या आप जानते हैं कि रात को सोते हुए भी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे सोते हुए बच्चों के चेहरे पर होती है, बिल्कुल वैसी। राघव को महसूस हुआ कि आज वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, क्योंकि अब वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच रहा था।

पर इस बार वो पुरानी गजलें नहीं सुन रहा था, बल्कि रेडियो पर कुछ ऐसे गाने सुन रहा था जो कि आपको थिरकने पर मजबूर कर दे। ये सुनते सुनते अचानक राघव ने कहा, मधुसूदन जी, डिस्चार्ज के बाद क्या प्लान्स हैं आपके? मतलब घर जाऊंगा और क्या? इतने सालों से कहीं बाहर जा रहे थे क्या? घर ही तो जा रहे थे। चलो कहीं और चलते हैं। क्या बात है राघव जी, हॉस्पिटल के कमरे से सीधा ट्रिप? हाँ, राघव ने कहा, रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे एक नई उमंग दी है। मधु हैरानी से राघव की ओर देख रहा था। सच में ऐसा क्या मिल गया जनाब? राघव ने मधु की डायरी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे सपने। मेरे पास सपने नहीं थे, सिर्फ पैसा था। और तुम्हारे पास सपने थे पर पैसा नहीं था। क्यों ना हम दोनों मिलकर अब अपनी जिंदगी जी लें? मधु काफी हैरान हुआ। क्या आपने रात को मेरी डायरी खोली थी? सिर्फ खोली नहीं थी जनाब, पूरी पढ़ भी ली थी। अरे क्या सारी जिंदगी सपने देखने में ही बिता दी? उसे पूरा कब करोगे? मधु शांत हो गया। माना मेरे सपने अधूरे हैं, लेकिन मैं इन्हें आपके पैसों से पूरा नहीं करूंगा। क्यों? क्यों पूरा नहीं करोगे? ये वक्त इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं है। देखो, इतने सालों बाद मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हॉस्पिटल से हम दोनों डिस्चार्ज भी होने वाले हैं, तो चलो जिंदगी जीते हैं। और ऐसा मत समझना कि मैं तुम पर पैसे खर्च कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सपनों में खुद को जी रहा हूँ। ये बात मधु को बहुत अच्छी लगी, पर अभी भी उसने हाँ में जवाब नहीं दिया था, क्योंकि शायद उसे डर था, डर कि उसका परिवार इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होगा। कहीं ना कहीं राघव भी इस बात को समझ पा रहा था। तभी तो शाम को जब मधुसूदन का पूरा परिवार उस कमरे में था, तब राघव ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिससे मधुसूदन से सब नाराज हो गए थे। क्या था ये बताऊंगी आपको, क्योंकि

डिस्चार्ज से एक दिन पहले शाम को मधु का पूरा परिवार उसके साथ रूम नंबर 307 में मौजूद था। वो सब खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि अब मधु ठीक होकर अपने घर जा रहा था। अचानक राघव ने

0: कुछ ऐसा कहा जिससे कि सब हैरान और मधु से नाराज हो गए। राघव ने बताया कि वो लोग अपने अपने घर नहीं जा रहे, बल्कि कल डिस्चार्ज के बाद सीधा गोवा जा रहे हैं। कमला पूरी तरह से हैरान थी। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अभी इतनी बड़ी बीमारी से उठे हैं और हॉस्पिटल से सीधा गोवा, ये क्या मजाक है मधु? बेटों ने भी मना किया, पर जब मधु ने अपनी बेटी की ओर देखा तो उसने कहा, पापा आप जा सकते हैं, आपने अपनी जिंदगी के 40 साल अपने परिवार को दिए हैं, पर अब आपका वक्त है, आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहें आप जी सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया, पर मधु को तो अब एक और साथी मिल गया था जो चाहता था कि मधु अपनी जिंदगी जी ले। बस फिर क्या था, रात को ही फ्लाइट की टिकट्स और होटल रूम्स बुक हो गए और अगली सुबह डिस्चार्ज मिलते ही दोनों पहले घर नहीं बल्कि एयरपोर्ट पहुंचे। राघव ने भी अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी। गोवा एयरपोर्ट पर उतरते ही दोनों 60 साल के नहीं बल्कि 25 साल का अपने आप को महसूस कर रहे थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही दोनों ने पहली सेल्फी ली, जिसे देखते ही राघव ने कहा, यार तुम फोटो मत खींचो, मेरी शक्ल अच्छी नहीं आती। मधु जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, ये बात तुम्हें अभी पता चली है? पहले नहीं पता थी। राघव ने गुस्से में कहा, यार तुम बहुत बदतमीज हो। अरे कहां, सच ही तो बोल रहा हूं। ये तो बस शुरुआत थी उन लम्हों की जो कि अब दोनों जीने वाले थे। यहां मधु ने अपना पहला सपना जिया, समुद्र के किनारे बैठकर सनराइज देखने का सपना। दोनों के हाथों में चाय का कप था और सामने से उगता हुआ सूरज एक ऐसी रोशनी उनकी जिंदगी में लेकर आया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब साथ में दोस्त था जिसे दिल की हर बात बिना कहे ही समझ आ जाती थी। 3 दिन गोवा में एक साथ मस्ती करते हुए बिताने के बाद अब बारी थी सेकंड डेस्टिनेशन की, यानी कि लद्दाख, वो भी बाइक ट्रिप पर। एक बहुत ही रोमांचक और लंबा सफर था ये, जिसमें दोनों को 3500 किलोमीटर राइड करना था, जो कि इस हालत में दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, जिसके चलते उन्होंने लद्दाख तक की फ्लाइट ली और उसके बाद एयरपोर्ट से अपने होटल तक बाइक। होटल पहुंचकर दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए एक लंबी नींद लेने के बाद जब वो खाना खाने पहुंचे तो मधु को वहां का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ही रेस्टोरेंट मैनेजर ने मधु को किचन में जाने की परमिशन दे दी। वहां जाकर मधु का एक अलग ही अंदाज राघव ने देखा। वो मसालों से इस तरह से खेल रहा था मानो एक माँ अपने बच्चे को गोद में खिला रही हो। खाना सिर्फ राघव और मधु के लिए नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले हर कस्टमर के लिए था, और इस खाने का फीडबैक इतना अमेजिंग था कि राघव ने तो ठान लिया कि मधु का रेस्टोरेंट खोलने का सपना भी अब वो जल्द ही पूरा करेगा। रात को जब मधु सो गया, राघव ने अपने मैनेजर को फोन किया और उसे एक अच्छी जगह तलाशने के लिए कहा, जहां पर वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, जिसे चलाने की पूरी जिम्मेदारी मधु के कंधों पर रखी जाने वाली थी। इस ट्रिप के बाद बारी थी पहाड़ों की। इन दोनों दोस्तों ने अपने हर सपने को पूरा किया, पर इस बार मधु के सपनों के बीच पैसा नहीं था, सिर्फ जिंदगी थी।
1: कहानी अभी बाकी है।
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: नहीं, अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं।
1: इतने सारे सपने पूरे करने के बाद अब बारी थी उस सपने की जिसके पीछे भागते भागते पूरे 40 साल हो गए थे। मधु एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे और इस सपने को पूरा किया राघव ने। उसने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। रेस्टोरेंट चलने लगा, बहुत तेजी से नहीं, कभी 10 कस्टमर आते तो कभी 30, कभी पूरा दिन कोई नहीं आता। एक महीने में नुकसान भी हुआ। मधु बहुत परेशान था। उसने राघव से कहा, शायद मुझसे नहीं होगा। राघव ने कहा, क्यों? क्योंकि लोग नहीं आ रहे और मैं कब तक आपका नुकसान करवाता रहूंगा। राघव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें क्या चाहिए था? अपना रेस्टोरेंट ना, वो तुम्हारे पास है, मधु ने कहा। लेकिन वो चल तो नहीं रहा ना, राघव बहुत ही शालीनता से बोला। तुम 40 साल शेफ रहे हो, बिजनेसमैन बनने की कोशिश मत करो, बस खाना बनाओ, बाकी सीख जाओगे। कुछ महीनों बाद एक शाम रेस्टोरेंट में एक परिवार आया। उनके छोटे बेटे ने दाल खाई और कहा, अंकल दाल इज अमेजिंग। मधु किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया हो। राघव उस समय सामने के टेबल पर बैठा था। उसने ये सब देखा। बच्चे के जाने के बाद मधु उसके पास आया। सुना? सुना आपने? हाँ, उसने कहा, मेरी दाल अमेजिंग है। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन हाँ, तुम एक दोस्त की बात क्यों मानोगे? एक बच्चे ने कहा तो तुम नाचने लग गए। शायद जिंदगी में खुश होने के लिए कुछ बड़ा नहीं बल्कि कुछ अच्छे शब्द चाहिए होते हैं। 2 साल में बहुत कुछ बदल गया। मधुसूदन का रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नहीं हुआ। उसने दूसरी ब्रांच भी नहीं खोली। उसे इसकी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। वो सुबह खुद मार्केट जाता, सब्जियां खरीदता, कभी किचन में खाना बनाता, कभी बाहर बैठकर कस्टमर से बातें करता और शाम को टाइम पर घर लौट जाता। अब वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा था। कमला के साथ महीने में एक बार कहीं घूमने जरूर जाता, बच्चों से मिलने जाता, पोते पोतियों के लिए खाना बनाता और सबसे जरूरी, अब जब कोई उससे पूछता कि आप क्या करते हैं तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैं अपना रेस्टोरेंट चलाता हूँ। राघव की जिंदगी में भी बदलाव आया। उसका बिजनेस पहले की तरह ही चल रहा था लेकिन उसने काम करना थोड़ा कम कर दिया था। हर मीटिंग में खुद मौजूद रहने की बजाय वो अपने मैनेजर्स को आगे बढ़ा रहा था। कुछ पुराने रिश्तों को लेकर उसने लोगों से बात की, किसी से माफी मांगी, किसी से सिर्फ ये कहा कि मुझे तब समझ नहीं आया। उसे नहीं पता था कि इससे पुराने रिश्ते वापस आएंगे या नहीं, लेकिन अब उसे किसी से माफी की उम्मीद भी नहीं थी। जिंदगी जीना इतना मुश्किल भी नहीं है। एक दोस्त का फोन, बिना किसी काम के मिलने का बहाना, एक कप चाय, घर लौटने की जल्दी और अगले दिन के लिए कोई छोटा सा प्लान, बस इतना ही तो चाहिए। और यकीन मानिए, अगर ये सब आपकी जिंदगी में है तो आप एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। कभी कभी जिंदगी हमें खुद को जीने का मौका देती है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जब भी आपको ये मौका मिले, अपनी बाहों को खोलकर इस जिंदगी को उसमें समेट लेना चाहिए। ये थी आज की मेरी कहानी, मधुसूदन और राघव की कहानी। खैर, ये सिर्फ इन दोनों की नहीं बल्कि हम सब की कहानी है। काम, घर, परिवार, इन सब में रहकर कभी कभी हम खुद के सपने जीने भूल जाते हैं। वो सपने जो हमें रात को सोने नहीं देते और दिन में हर वक्त बेचैन करते हैं। ऐसे सपने जीने का मौका जब भी मिले उसे जी लेना चाहिए। वो दोस्त जो आपको कहें कि चल बैग पैक कर और चल मेरे साथ, उन्हें कभी ना नहीं कहना चाहिए। लड़कियों की जिंदगी हर बार खुद को जीने का मौका नहीं देती। अगर आपके पास भी ऐसे मौके आए तो उन्हें मुस्कुरा कर जी लेना। और ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ, कुछ नए दोस्तों के साथ। तब तक आप जी लीजिए अपनी जिंदगी।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास रेडियो महारानी है।
2: नाइन पॉइंट सिक्स एफ एम कुछ हटके।

0: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: नाइन पॉइंट सिक्स एफ एम।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं बिजनेस मंत्र। बिजनेस मंत्र।
1: आई एम संजीव अग्रवाल, आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल कंटेनर्स एंड स्टील ड्रम्स। अगर आप बॉर्न एंटरप्रेन्योर हो, आपके अंदर जज्बा है मुझे कुछ करना है, देन यस यू कैन गो विद द स्टार्टअप। बिकॉज सब जा रहे हैं एज ए स्टार्टअप, हमें भी जाना चाहिए। नहीं, एंटरप्रेन्योर्स बनते नहीं है, पैदा होते हैं। आपके अंदर जज्बा है, आप कर लोगे, तो आपको फिर स्टार्टअप या आप कुछ भी करो, मतलब यू रियली वांट टू डू, तो आपके अंदर से आपको बैठने नहीं देगा, राइट? और आपके अंदर एक रीजन होना चाहिए, क्यों, सबसे पहले क्यों। क्यों मीन्स कि मुझे स्टार्टअप क्यों करना है, से मतलब फॉर मुझे प्रूफ करना है आई कैन डू इट, मुझे पैसे कमाने हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर लें, फंड्स आ जाएंगे, नहीं चला देखेंगे। सो इट इज़ योर कॉल, लाइक कुछ जगह खुद से होता है, डेस्टिनी इज ऑलवेज सपोर्टिव, यस उसके बिना कुछ नहीं होना है। देखिए, डेस्टिनी इज लाइक योर ओल्ड कर्मास, योर प्रीवियस कर्मास, दैट गिव्स यू लक। करेंट कर्मास गिव यू स्ट्रेंथ, जिससे आप आगे बढ़ो। मैं तो मान के देता हूँ, किस्मत भी आप हाथ की लकीरों में अर्न करके लाए हैं, आप इस जन्म में करिए, आपको अगले जन्म में मिलेगा, इफ यू बिलीव इन टू दैट थ्योरी।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक है।

0: फ्लैशबैक।
1: हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: कहानी की शुरुआत में राजू नाम का लड़का सड़क पर गाने गाकर अपनी आमदनी करता दिखाया जाता है, पर एक रात राजू को सड़क किनारे एक घायल आदमी मिलता है जो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। इसलिए राजू खुद ही उसका इलाज करके सुबह तक जिंदा रहने में उसकी मदद करता है, पर सुबह होते ही वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। कई दिनों बाद कुछ डकैत राजू को गलती से पुलिस का आदमी समझकर मारने के लिए अपने अड्डे पर ले आते हैं।
3: लेकिन लगता पुलिस वाला ही है।
4: पुलिस भी हमें पकड़ने के लिए नए नए रास्ते निकालती है। साले कोड़ी भेजा था और अब एक बहरूपिया आया
3: है। कौन है रे तू? कहाँ का रहने वाला है?
2: जहाँ वही घायल आदमी मिलता है जो उन सब डाकुओं का सरदार निकलता है, क्योंकि राजू ने सरदार की जान बचाई थी, इसीलिए वो लोग उसे अपने साथ ही रहने के लिए मना लेते हैं। राजू लुटेरों के बीच रहकर भी लूटपाट का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि गाना गाकर उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है।
1: मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहां मेरा धाम।
2: एक लूट के दौरान राका नाम का लुटेरा कुछ मासूम लोगों को मार देता है, जिससे नाराज होकर राजू पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है।
5: माफ कीजिए, नमस्ते का जवाब इस तरह नहीं, इस तरह देते हैं जी।
4: पुलिस वाले की नमस्ते का
5: सवाल है? इस बात का तो फैसला हो चुका है जी। सरदार जी ने और उनकी बेटी ने मेरी गंगा जी की कसम का विश्वास भी कर लिया है जी।
2: ताकि राका को अरेस्ट किया जा सके, पर पुलिस सभी डाकुओं का एनकाउंटर करने लगती है। अपने डाकू साथियों को मरता देखकर राजू इतना परेशान हो जाता है कि पुलिस के आने पर सारे लूटमार का इल्जाम खुद पर ले लेता है।
5: आप ही इंसाफ कीजिए, गंगा जी की कसम खाने के बाद कोई झूठ बोल सकता है? बोलिए बोलिए। देखा, गंगा जी कोई मामूली नदी नहीं है, शिवजी की जटा से निकलती है। यूं
2: उसको ऐसा करता देखकर सभी लुटेरे अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस उन्हें जान से मारने की बजाय सुधार गृह में डाल देती है, और राजू का सबको सही रास्ते पर लाने का मकसद पूरा हो जाता है।
1: अब लौट चले।
2: रेडियो महारानी सेलिब्रेट करता है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के 63 साल।
1: होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी।

0: Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: क्या आप मिस पंजाबन बनना चाहती हैं? तो सॉरी जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो महारानी के पास तो अपनी मिस पंजाबन पहले से ही है, जिसका अंदाज है पटोला और जिसकी म्यूजिक चॉइस है बीट्स ऑफ भंगड़ा। और अगर आपको भी उनकी बायो जाननी है तो सुनिए खिड़िया रंग पंजाब दा। यहाँ आपको मिलेगी बॉलीवुड की हर अपडेट इन पंजाबी एक्सेंट।
1: पूछ देने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया।
0: So keep listening to RJ Sukhdeep Monday to Friday सुबह 11 से 2 only on Radio Maharani 89.

0: रेट्रो फ्लैशबैक,
1: रेट्रो फ्लैशबैक,
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग,
3: संभालना।
4: एक माँ की दो बच्चियाँ, सीता और गीता।
5: संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, साथ ही चल।
4: एक शहर में पलने वाली शांत स्वभाव की लड़की सीता और दूसरी बंजारों की बस्ती में हलचल मचाकर रखने वाली गीता।
6: क्या समझती है अपने आप को, जब देखो मैं आती रहती है, देखो घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे ढूंढे तुझे मेरी चूती, राका पकड़ तो इसे।
4: दोनों थी तो एक ही माँ की पैदाइश, पर परवरिश अलग अलग जगह, वो भी अलग अलग तरीकों से।
7: माँ, पिताजी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है।
4: एक मौका ऐसा आता है जब दोनों बहनों की हो जाती है अदला बदली।
8: सीता बेटी, हम तेरे चाचा और चाची हैं।
6: सूरज से तो चमचा और चमची लगते हो।
4: और तभी रंजीत, जो कि सीता से शादी करने के लिए उसे किडनैप कर लेता है, जिस वजह से गीता अपनी बहन सीता को बचाने वहाँ पहुँच जाती है।
7: घबराओ मत सीता, तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया है। आप कौन है आप? मुझे इन हैरान आंखों से न देखो सीता, मैं कोई पराई नहीं हूँ, तुम्हारी ही दूसरा रूप हूँ, तुम्हारी जुड़वा बहन गीता।
4: और सालों से बिछड़ी बहनों का हो जाता है मिलन। रेडियो महारानी सेलिब्रेट करता है फिल्म सीता और गीता के 51 साल।

0: आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास रेडियो महारानी है।
2: नाइन पॉइंट सिक्स एफ एम कुछ।

0: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: नाइन पॉइंट सिक्स एफ एम।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना। और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेट्रो फ्लैशबैक,
1: रेट्रो फ्लैशबैक।
2: दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
3: कहानी की शुरुआत में ठाकुर नाम का रिटायर पुलिस ऑफिसर जय और वीरू नाम के दो चोरों को जेल से छुड़वा कर अपने गांव रामगढ़ बुलवाता है।
4: तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो।
5: अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे।
6: तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया
7: पार्टनर, बोल ही दिया तो देख।
3: रामगढ़ तक पहुँचने के लिए टांगा चलाने वाली बसंती उन दोनों की मदद करती है।
8: हाँ बाबू जी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़ कहाँ जाना है बोलो? टांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का टांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफुजुल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो।
3: जिसकी वजह से वीरू बसंती को पसंद करने लगता है।
8: अरे क्योंकि तुम यहाँ कैसे?
5: युके यूं ही बोलो, कौन सा आम तोड़ना है?
8: जो मैं आम बोलूं तुम गोली मार के तोड़ सकते हो?
5: ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ।
8: तुम तो बड़े निशान के लगते
7: हो। हां जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये।
3: गांव पहुंचकर दोनों ठाकुर की तिजोरी को लूटने का सोचते हैं, पर चोरी से पहले ही उन्हें पता चलता है कि कैसे गब्बर नाम के डाकू ने पूरे गाँव का जीना मुश्किल कर रखा है।
9: कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
10: पूरे 50,000।
9: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
3: और उसे ही पकड़ने के लिए ठाकुर को जय और वीरू की मदद चाहिए, जिसके लिए उन्हें इतना पैसा दिया जाएगा कि उन्हें दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जय और वीरू मान जाते हैं और होली वाले दिन डाकुओं के आने पर उन पर हमला कर देते हैं।
10: गब्बर को पता चला कि इस गांव ने उसके आदमियों को अनाज नहीं दिया तो बहुत खून खराबा हो सकता है।
3: पर इस लड़ाई के दौरान जय देखता है कि ठाकुर ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिससे गांव वालों की जान जा सकती थी। जिसके बाद सबको एक सच्चाई का पता चलता है कि जब पुलिस ऑफिसर ठाकुर ने गब्बर को पकड़ने की कोशिश की थी तब गब्बर ने उसके दोनों हाथ काट दिए थे और उसके पूरे परिवार को भी जान से मार दिया था।
11: ये हाथ हमको दे दे ठाकुर।
10: नहीं,
11: ये हाथ हमको दे ठाकुर।
3: इसलिए ठाकुर रिटायर होने के बाद भी गब्बर को पकड़ना चाहता था, पर दोनों हाथ ना होने की वजह से वो लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकता था। ठाकुर की कहानी जानकर जय और वीरू बिना किसी पैसों के डाकुओं के अड्डे पर हमला करते हैं और गब्बर को पकड़कर ठाकुर के हवाले कर देते हैं।
10: सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है गब्बर, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी हैं।
3: इस लड़ाई में वीरू अपने सबसे अच्छे दोस्त जय को हमेशा के लिए खो देता है।

0: जिंदगी काटने के लिए उसे बसंती का साथ मिल जाता है।
1: कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।
0: रेडियो महारानी सेलिब्रेट करता है फिल्म शोले के 48 साल।

Whatever.

0: आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास रेडियो महारानी है।
2: नाइन पॉइंट सिक्स एफ एम कुछ हटके।

0: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: नाइन पॉइंट सिक्स एफ एम कुछ छक्के।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ छक्के हैं।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं बिजनेस मंत्र। बिजनेस मंत्र।
1: आई एम संजीव अग्रवाल, आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल कंटेनर्स एंड स्टील ड्रम्स। अगर आप बॉर्न एंटरप्रेन्योर हो, आपके अंदर जज्बा है मुझे कुछ करना है, देन यस यू कैन गो विद स्टार्टअप। बिकॉज सब जा रहे हैं एज ए स्टार्टअप, हमें भी जाना चाहिए। नहीं, एंटरप्रेन्योर्स बनते नहीं है, पैदा होते हैं। आपके अंदर जज्बा है, आप कर लोगे, तो आपको फिर स्टार्टअप या आप कुछ भी करो, मतलब यू रियली वॉन्ट टू डू, तो आपके अंदर से आपको बैठने नहीं देगा, राइट? और आपके अंदर एक रीजन होना चाहिए, क्यों? सबसे पहले क्यों? क्यों मीन्स कि मुझे स्टार्टअप क्यों करना है, से मतलब फॉर मुझे प्रूफ करना है आई कैन डू इट, मुझे पैसे कमाने हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर लें, फंड्स आ जाएंगे, नहीं चला देखेंगे। सो इट इज़ योर कॉल, लाइक कुछ जगह खुद से होता है, डेस्टिनी इज ऑलवेज सपोर्टिव, उसके बिना कुछ नहीं होना है। देखिए, डेस्टिनी इज लाइक योर ओल्ड कर्मास, योर प्रीवियस कर्मास, दैट गिव्स यू लक। करेंट कर्मास गिव यू स्ट्रेंथ, जिससे आप आगे बढ़ो। मैं तो मान के देता हूँ, किस्मत भी आप हाथ की लकीरों में अर्न करके लाए हैं, आप इस जन्म में करिए, आपको अगले जन्म में मिलेगा, इफ यू बिलीव इन टू दैट थ्योरी।

0: क्या आप मिस पंजाबन बनना चाहती हैं? तो सॉरी जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो महारानी के पास तो अपनी मिस पंजाबन पहले से ही है, जिसका अंदाज है पटोला और जिसकी म्यूजिक चॉइस है बीट्स ऑफ भंगड़ा। और अगर आपको भी उनकी बायो जाननी है तो सुनिए खिड़िया रंग पंजाब दा। यहाँ आपको मिलेगी बॉलीवुड की हर अपडेट इन पंजाबी एक्सेंट।
1: पूछ देने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया।
0: So keep listening to RJ Sukhdeep Monday to Friday सुबह 11 से 2 only on Radio Maharani 89.7।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई है, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहाँ जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो, अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है, वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को।